FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों

0: देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे गजानन, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म तत्व हैं। आप ही इस संसार के एकमात्र कर्ता धर्ता

और हरता है। आप ही ये संपूर्ण विश्व और ब्रह्म हैं और आप ही साक्षात नित्य आत्मा हैं। सो हे विघ्नहर्ता, हमारे भी सारे कार्य बिना विघ्न के कर दीजिए।

हृदय बसा हुआ उराया, यानी जिस पर श्री राम की कृपा होती है उस पर सभी कृपा करते हैं। जिनके मन में कपट, घमंड, माया नहीं होती, उन भक्तों के हृदय में प्रभु सदा निवास करते हैं।

जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके

हे ईश्वर, जिनके हृदय आपका नाम हो तो किसी और नाम की क्या जरूरत। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें।

राम राम कहने से मन हल्का हो जाता है, नकारात्मक विचार नहीं आते, पीड़ा शांत हो जाती है, खुशी उमड़ आती है, गम कोसों दूर चले जाते हैं, मान सम्मान बढ़ जाता है, बिगड़े काम बनते हैं, भजन सुमिरन समृद्धि आती है, मानसिक बल मिलता है,

0: भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आज अपने सुरों से शिरकत की हरिओम शरण अनुराधा पौडवाल, अनुप जलोटा, नंदनी शरण ने। इन्हीं सुरों के साथ वंदना कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए हैं संगति प्रभाव। आलेख डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का है, वाचन किया है राखी कटारा ने।
1: सम्राट राम

रामदेव का पुत्र बहुत उद्दंड था। किसी भी सभासद, मंत्री या सेनापति का अपमान करने में उसे बहुत आनंद आता था। राज्य के सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि राजकुमार कुमारदेव के दर्शन न हों। सम्राट ने अनेकों विद्वानों से परामर्श किया, पर वो राजकुमार कुमारदेव की उद्दंडता नहीं छुड़ा पाए। दिन प्रतिदिन

0: अवश्य करता। सम्राट रामदेव अत्यधिक चिंतित थे। कुमारदेव का स्वभाव राजकुल के लिए कलंक सिद्ध हो रहा था। सम्राट ने महर्षि तीर्थराज के पास अपने अति विश्वस्त सभासद के द्वारा कुमारदेव की समस्या भेजी। महर्षि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने सम्राट को यज्ञ में आमंत्रित किया और सभासद से कहलवा भेजा कि जब सम्राट आएंगे तभी उनकी समस्या का समाधान भी होगा। यज्ञ प्रारंभ होने के 3 दिन पूर्व ही सम्राट रामदेव आश्रम की ओर चल पड़े। पहला पड़ाव राजधानी से 30 मील दूर एक गांव के निकट रखा गया। दिन भर की यात्रा से थके सैनिक और सम्राट शीघ्र ही सो गए। तभी किसी विलक्षण आवाज ने उन्हें जगा दिया। ये आवाज किसी नन्हे से तोते की थी। वो मनुष्य की बोली में अपने स्वामी से कह रहा था, स्वामी आज तो बहुत अच्छा शिकार आ गया है। इसके पास तो सोना ही सोना है। सोने का मुकुट और मणियों जड़ित बहुमूल्य वस्त्र हैं। अब तो जीवन भर भटकना नहीं पड़ेगा। स्वामी एक ही दाव में हिसाब कर लें, ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। तोते का मालिक एक खूंखार डाकू था। सम्राट को वो पहचानता था। उसने तोते को चुप कराना चाहा, किंतु ढीठ तोता चुप न रहा। फिर बोला, सम्राट है तो क्या हुआ, सिर धड़ से अलग कर दीजिए और चुपचाप सारा सामान अपने अधिकार में ले लीजिए। रात के अंधेरे में सम्राट रामदेव की नींद उड़ गई। तोते की भयानक मंत्रणा ने उन्हें कुछ डरा दिया। सुबह होने से पूर्व ही उन्होंने सैनिकों को जगा दिया और उन्हें आगे प्रस्थान की आज्ञा दे दी। सम्राट रामदेव अपनी यात्रा पूरी कर महर्षि तीर्थराज के आश्रम में पहुंचे। आश्रम पहुंचकर महाराज महर्षि के दर्शन करने उनके पास गए। चरण स्पर्श किए तभी एक मधुर ध्वनि उनके कानों में पड़ी, स्वागतम सुस्वागतम सम्राट। आश्चर्य से सम्राट ने ऊपर दृष्टि उठाई। समीप के एक वृक्ष पर बैठा एक नन्ना सा तोता बोल रहा था। रात की घटना सम्राट को तत्काल याद आई। सम्राट बोले, तोते तुम्हारा स्वर कितना प्रिय और मोहक है, और एक वो स्वर था जिसने मुझे डरा दिया। तोते के पूछने पर सम्राट ने रात का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तोते ने अत्यधिक व्यथित होते हुए कहा, महाराज वो तोता मेरा सगा भाई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सम्राट बोले, वत्स एक ही उदर से जन्मे, तुम दोनों भाइयों में ये विसंगति कैसी? महाराज ये सब संगति का फल है। मेरा भाई डाकुओं के साथ रहता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके स्वभाव में क्रूरता हो। मुझे जो ज्ञान मिला वो महर्षि के आश्रम का प्रतिफल है, तोते ने जवाब दिया। सम्राट रामदेव को अपनी समस्या का कारण और निवारण मिल गया। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात राजधानी वापस आते ही बुरे साथियों का राजकुमार कुमारदेव से मिलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया।
1: चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का विषय लेकर आए थे संगति प्रभाव। आलेख डॉक्टर शरद चंद्र सक्सेना का था, वाचन राखी कटारा का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ से लिए कुछ अंश। स्वर आशा भोसले जगजीत सिंह के हैं, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ से लिए कुछ संगीतबद्ध अंश। स्वर आशा भोसले जगजीत सिंह के थे। संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 10 बजे से आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन राग माल गुंजी में। किसान भाई और बहनों के लिए लेकर आएंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभ, कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से बेहतर खेती।

इसी के साथ आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा गौ संवर्धन में किसानों की भूमिका। वार्ताकार होंगे विभोर और आपसे भेंट करेंगे दीपक गोस्वामी। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युव वाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय रहेंगे विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव। इसी के साथ होगी विज्ञान वार्ता। विषय रहेगा इंटरनेट का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष। जानकारी देंगे निखिल चौधरी। ब्रज माधुरी कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:31 पर। 9:00 समय रहेगा हिंदी वार्ता का। विषय रहेगा आम आदमी की पहुंच से दूर जेनेरिक दवाएं। जानकारी देंगी निशा राठौर। कार्यक्रम आबोहवा, ये आप कार्यक्रम सुनेंगे 9:25 से। प्रायोजित कार्यक्रम गीत बादल SMS का समय रहेगा 12:00 से। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय रहेगा 11:00। प्रमोद कुमार शर्मा के गाए ब्रज लोक गीतों का आनंद लीजिएगा 12:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय आज 2:30 पर रहेगा। बहनें अपना कार्यक्रम सुन सकेंगी वनिता लोक 1:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा बदलती जीवन शैली में महिलाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बेटी की शिक्षा में परिवार की भूमिका। इसी के साथ सुनेगा कहानी अंजना मददगार, कहानीकार अर्चना विमल।

भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 से आप सुन सकेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31। चर्चा का विषय यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 से।

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है बैंगन की प्रमुख प्रजातियां और बुआई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बैंगन जो है सब्जी वाली फसलों का सिरमौर माना जाता है, प्रमुख फसल मानी जाती है और इसको वर्ष में 3 बार तो सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लिया जा रहा है, वर्षों भर इसको लिया जाता रहता है। लेकिन इस समय जो इसकी नर्सरी डाली जाएगी, उसके बाद इसकी जो रोपाई होगी जुलाई अगस्त के महीने में होगी और इसके बाद इससे उत्पादन मिलता है। पंद्रह जून से लेकर 15 जुलाई का समय वर्तमान में इसकी नर्सरी डालने का है और इसके लिए जो प्रजातियां हैं, लंबे बैंगन में आजाद क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति, KS 331 और पंत सम्राट है। गोल बैंगन में आजाद 13, पंत ऋतुराज, कल्याणपुर

0: 3 KS224 पूसा पर्पल राउंड, ये इसकी किस्में हैं। और एक हेक्टेयर की नर्सरी डालने के लिए यानी कि एक हेक्टेयर की रुपाई के लिए करीब आपको 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी डालनी होती है। और नर्सरी का जो बेड्स तैयार की जाएंगी उनका आकार रहता है 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, और इन बेड को सामान्य सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। और बेड्स पर सड़ी गोबर की खाद, सुपर फास्फेट की थोड़ी मात्रा मिला करके उसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। और एक हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र है उसमें करीब 500 ग्राम बीज हमको बोना होगा। और बीज को शोधित करना जरूरी है। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को शोधित कर रहे हैं तो 5 ग्राम 1 किलो बीज को शोधित करता है। अगर कैप्टन थीरम से शोधित कर रहे हैं तो 3 ग्राम कैप्टन थीरम 1 किलो बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त रहता है। नर्सरी में बीजों की बुवाई लाइनों में की जाती है, और इसमें लाइन से लाइन की दूरी करीब 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हैं, और उसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर रखते हैं, और बीज की गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। जब इसकी बुवाई कर दी जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर एक पतली परत इस मिश्रण की डाली जाती है, जिसमें 2 भाग कंपोस्ट होता है, 1 भाग बालू और 1 भाग मिट्टी का मिश्रण होता है। और इसकी करीब 1 सेंटीमीटर मोटी तह से इसको ढक दिया जाता है। तत्पश्चात पतवार से क्यारियों को ढक देते हैं, हजारे से सिंचाई करते रहते हैं, और पतवार से क्यारियों को उस समय तक ढके रहने देते हैं जब तक इसका अंकुरण न हो जाए। 3-4 दिन बाद अंकुरण सफलतापूर्वक हो जाता है और उसके बाद पतवार को हटा दिया जाता है। फिर सुबह शाम हजारे से सिंचाई या नालियों के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है, और 4 से 5 सप्ताह में पौध रोपने के योग्य हो जाती है। और कहने का अर्थ यही है कि अगर जून में आपने इसकी वो रोपाई की है, नर्सरी डाली है, तो जुलाई के महीने से लेकर के अगस्त के महीने में इसकी रोपाई शुरू आप कर सकते हैं।
1: खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय था बैंगन की प्रमुख प्रजातियां और बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत

तालियां शाम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां राधा संग कान्हा का रास जहां चला रे इस झूठी दुनिया को छोड़ वहां।

गीता दत्त मन्ना डे के युगल सुरों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जन्म जन्म के फेरे में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था SN त्रिपाठी ने और शब्द रचना की थी भरत व्यास ने।

अभी आप सुन रहे थे बेजू बावरा फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत को अपने सुर दिए मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर अभी आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म दास्तान से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है सुरैया ने।

अभी आपने सुना ये गीत फिल्म दास्तान से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी सुरैया ने। शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नौशाद ने।

मजरू की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया स्टीव बर्मन ने। बाहर फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की शब्द रचना, सलिल चौधरी का संगीत बद्ध यह गीत फिल्म मधुमति से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी मुकेश ने। इसी के साथ भूले बिसरे गीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला अनुप्रसारण।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना।

0: योजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाए, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
3: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच

0: अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
2: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में ये अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 लाख से

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को चंद्रा खत्री की जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों, हम सभी जाने हैं भागवत गीता हमारे जीवन को आधार है और यह आधार के रचयिता हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण। जी हाँ साथियों, तो आज अपने कार्यक्रम में, ब्रजमाधुरी के कार्यक्रम में, ब्रज की माटी में आओ सुने हमारे आराध्य श्री कृष्ण की लीला को धाम वृंदावन की नगरी के इस्कॉन टेम्पल की महत्वता को।
1: जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के संदर्भ में। इस्कॉन मंदिर का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है और यह की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में करी ही और यह समाज की मूल मान्यता भगवत गीता पे आधारित है। इस्कॉन मंदिर को संबंध गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ते है, जहाँ वैष्णव को अर्थ हुए है भगवान विष्णु की पूजा और गौड़ को संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है। मानो जाए है के यही जगह से वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत भई। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने विचार और अपने कार्यों को समर्पित यह भक्ति योग को अभ्यास और प्रसार करवे के काजे इस्कॉन संस्था बनाई गई।

0: इस्कॉन के उपदेश और प्रधान को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आरंभ कियो गयो और संहिताबद्ध कियो गयो, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाए हैं। मानो जाए हैं कि स्वामी प्रभुपाद भारत में कई जगहन पे इस्कॉन मंदिर बनवानो चाहवे है। सन 1975 में बिन ने वृंदावन में यह मंदिर बनवायो। कछु ही वर्षन में यह मंदिर देश के कोने कोने में प्रसिद्ध है गयो। मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की सन 1977 में मृत्यु है गई और मंदिर परिसर में उनको स्मारक बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के ही समीप स्थित है और मानो जाए है कि 5000 वर्ष पहले जा स्थान पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गैयान को चराए के आयो करते, खेलो करते, गोपीन के संग लीला करो करते, ठीक वही स्थान पे इस्कॉन मंदिर को निर्माण करो गयो है। यह स्थान श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की विभिन्न कहानी से जुड़ो भयो है।
1: हरे कृष्ण, मैं श्रीनिवास आचार्य दास इस्कॉन में नावन में सिक्योरिटी का काम देखता हूँ और इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस और ये मंदिर 1975 में बन के तैयार हो गया और

इस मंदिर के जो फाउंडर आचार्य हैं वो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने अपना शरीर 1977 को छोड़ा और समाधि इस्कॉन मंदिर के सामने ही बना हुआ है। और इस्कॉन परिसर के अंदर हमारे गेस्ट हाउस है और म्यूजियम है, गुरु जी के समाधि हैं और प्रभुपाद जी जहाँ निवास करते थे जिसको प्रभुपाद हाउस बोलते हैं वो भी है और गेस्ट हाउस है और एक बहुत ही अच्छा सुंदर लाइब्रेरी है जिसमें हर एक भाषा में लिटरेचर आपको मिलेगा, जो शास्त्र है, गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है और सारे 64 ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं वो सारे ग्रंथ लाइब्रेरी में मिलते हैं, जिसमें कोई भी आके स्टडी कर सकते हैं। और इस्कॉन से थोड़ी दूर में एक भक्तिवेदांत स्वामी गौशाला है जिसमें हमारे 350 गाय हैं और वहाँ पर प्रसाद फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फुल प्रसाद जैसे रोटी चावल दाल दो सब्जी सुबह 9 बजे और सुबह शाम को 3 बजे, उसमें कोई भी आके प्रसाद ले सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और हम लोग का मुख्यतः हरिनाम का प्रचार है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का हम लोग प्रचार करते हैं। ऐसे विश्व में बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन इस मंत्र को महामंत्र वेदों में बताया गया है। इस मंत्र का जप करने से हमको शांति मिलती है और भगवान को जानने के लिए हमको ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और भगवद गीता जो है हम लोग का मुख्य प्रचार है, भगवद गीता की और भागवतम की। प्रभुपाद जी ने इस किताब को हर एक भाषाओं में लिख के देश विदेश में प्रचार किया। आज हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस्कॉन का सेंटर है, हर एक कंट्री में सेंटर है और जिसमें लोग सनातन धर्म जो भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए जो नियम है उसको पालन करते हुए और प्रचार प्रसार में लोग आगे भाग प्रचार प्रसार में भाग ले रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भक्त बना रहे हैं। ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इस कॉन्सेप्ट का।

0: इस्कॉन मंदिर को निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थर के करो गयो है। मंदिर की दीवारन पे खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग करी गई है, जामे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और बिन के जीवन से जुड़ी घटनान को सुंदर वर्णन करो गयो है। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को त्योहार विशेष धूमधाम और हर्षोल्लास के संग मनायो जाए है। या के अतिरिक्त कछु अन्य त्योहार भी विशेष रूप से यहाँ मनाए जाए हैं। या संदर्भ में जानकारी देते भाई आप हैं श्रीनिवास आचार्य।
1: विशेष करके जन्माष्टमी हम लोग सबसे ज्यादा मनाते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इसके बाद रामनवमी को इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस टाइम भी हम लोग बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, फूलों की बंगला बनाते हैं और 24 आवर्स कीर्तन होता है इस मंदिर में, और भक्त लोग बढ़ चढ़ के भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। और हमारे जैसे मंदिर है, मंदिर सुबह प्रातः 4:10 में जो गुरु जी की समाधि है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो 4:10 में उसकी आरती होती है। और 4:30 जो मेन मंदिर है कृष्ण बलराम की, वो 4:30 आरती होती है, जिसमें 3 विग्रह है हमारे मंदिर में मुख्यतः। गौर निताय जो कृष्ण और बलराम जी के दोनों भाई के अवतार हैं, जो आज से 500 साल पहले मायापुर, जो नवद्वीप मायापुर बोलते हैं, कलकत्ता से 3 घंटा की दूरी पे हैं, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और कृष्ण बलराम का बीच में है और राधा श्याम सुंदर, ये तीनों विग्रह का मंदिर है। एक्चुअली राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति है, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, एक अंतरंग शक्ति जो राधा रानी, बाहिरंग शक्ति जो दुर्गा देवी, और तटस्थ शक्ति जो सारी जीवात्मा तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो राधा रानी जो है हम लोग राधे वृंदावन वनेश्वरी भी बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी वृंदावन की इंचार्ज है।

0: बिना राधा रानी के या कृपा से कोई वृंदावन प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे शास्त्र में बताया गया है। और उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब राधा रानी के लिए भोग इत्यादि तैयार करते हैं और बहुत अच्छा से मंदिर को सजाते हैं और हम लोग फास्टिंग भी रखते हैं। इस तरह से हम लोग राधाष्टमी इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं और इस बार राधाष्टमी की सजावट भी मेरे को दिया गया है। मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से राधा रानी के श्रृंगार करें और मंदिर को सजाएं।
1: जी, इस्कॉन मंदिर में 3 वेदी हैं। इस्कॉन मंदिर के मध्य वेदी में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की पवित्र और अलंकृत मूर्ति रखी गई है। मंदिर का वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय है, जामे भक्तन को आनंद प्राप्त हुए है। इस्कॉन मंदिर में सायकाल को होवे वाली श्री कृष्ण भगवान की आरती बहुत लोकप्रिय है।

0: मंदिर के केंद्रीय स्लैब में बाईं ओर नित्यानंद जी के साथ चैतन्य महाप्रभु और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और इनके आध्यात्मिक कोच भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मूर्ति लगी हुई है। स्कॉन मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न राष्ट्रीयता और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आमे हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके बिन की प्रशंसा में गीत गावे, आशीर्वाद प्राप्त करें। यह मंदिर के अंदर का वातावरण तनाव मुक्त है। यहाँ श्रद्धालु अपनो गुणवत्ता पूर्ण समय बिताना पसंद करें हैं। मंदिर परिसर के भीतर भगवत गीता की कक्षा भी चले हैं, जो प्रातःकाल और सायंकाल में आयोजित करी जाए हैं।
1: हमारे मंदिर में चार नियम का पालन गुरु जी ने आदेश दिया है हर भक्तों के लिए, जो कि चार नियम इस प्रकार है। किसी तरह का नशा नहीं करना है और किसी तरह का नॉनवेज नहीं खाना, इवन कि प्याज लहसुन ये सब भी मना करते हैं। और किसी तरह का जैसे चाय कॉफ़ी इत्यादि भी नशे में आता है वो भी मना करते हैं। अवैध स्त्री संग के लिए मना करते हैं, जिसका मतलब शादी हो गया पति पत्नी के साथ रहे और दूसरे से संपर्क ना रखें। तो इस तरह से चार नियम का पालन करने पड़ते हैं। एक तो हुए मांसाहार, अवैध स्त्री संग और किसी तरह का नशा नहीं, और एक जुआ सट्टा यह सब मना करते हैं।
0: जी जी,
1: ये नियम पालन करना होता है
0: जी,
1: जब ही दीक्षा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम लोग का मतलब दीक्षा देते हैं, तुरंत दीक्षा नहीं देते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर जो नाम होता है उसी के हिसाब से उसको एक भगवत नाम दिया जाता है। जैसे नाम, मेरा नाम स्वपन था, अभी मेरा नाम श्रीनिवास आचार्य दास हो गया। तो इस तरह से गुरु जब दीक्षा देते हैं तो उसको दोबारा जन्म प्राप्त करने के लिए बोलते हैं कि दोबारा जन्म लिया उसने। इतने माँ पिताजी ने जन्म दिया, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और जब गुरु जी दीक्षा देते हैं तो भगवत प्राप्ति, भगवत दिशा में भक्ति में ऐसे आप अग्रसर हो सकते हैं और दूसरी दीक्षा होती है।
0: सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इस्कॉन मंदिर प्रातः काल 4:10 पे खुल जाए है। मंदिर खुलवे के बाद समाधि आरती हुए है और बाकी बाद सुबह 4:30 मंगला आरती हुए है। साथ ही अन्य कई तरह की भी आरती करी जाए हैं। या दौरान श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में दर्शन और पूजन को क्रम चलते रहे हैं। दोपहर 12:45 पे भगवान को भोग अरोग हो जाए है और बाकी बाद में पट बंद है जाए हैं। या के बाद सायंकाल को 4:30 मंदिर खुले हैं और गर्मी के मौसम में रात 8:45 पे मंदिर के पट बंद है जाए हैं, जबकि सर्दी के मौसम में 8:15 पे मंदिर के पट बंद है जाए हैं।

0: सुबह 4:30 को मंगल आरती होती है मेन मंदिर में, लोग स्नान करके आते हैं, सब साफ सुथरा वस्त्र बन के आते हैं, और सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक आरती ख़त्म हो जाती है, जिसमें तुलसी आरती भी शामिल रहता है। इसके बाद लोग 2 घंटे के लिए जपा करते हैं, 7:15 तक जपा करते हैं, फिर 7:15 बजे गुरु जी की आरती होती है, जिसमें गुरु जी को सभी भक्त लोग पुष्पांजलि देते हैं और उनकी कीर्तन होती है। फिर 8 बजे क्लास प्रारंभ होती है हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग जगह, और 8 से 9 बजे तक क्लास होती है। फिर 9 बजे से प्रसादम शुरू होती है 10 बजे तक। फिर प्रसादम लेने के बाद भक्त लोग अपने अपने सेवा में चले जाते हैं, किसी को डिस्पोजन करना है, किसी को पूजा का काम करना है, किसी को लाइब्रेरी संभालना है, हर तरह का मतलब सेवा है जो भक्त लोग खुद करते हैं
1: जी।
0: फिर दोपहर को 1:45 बजे मंदिर बंद होती है, फिर 4:30 बजे खुलती है, 4:30 से लेकर 6 बजे तक खुली होती है, फिर 6 से 7 तक बंद रहती है, फिर 7 बजे संध्या आरती होती है, और संध्या आरती के बाद फिर रात को भोग लगती है, फिर भोग लग के 8:45 बजे बंद हो जाती है
1: जी। अब ठाकुर जी के भोग की बात करें, बड़े भाव से भोग हम भक्तजन लगाते हैं ठाकुर जी को, तो प्रातः काल से रात्रि काल तक ठाकुर जी को भोग में कब और क्या अर्पित किया जाता है?
0: जैसे कि सुबह बाल भोग लगाते हैं, उसमें कुछ स्वीट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि संदेश, रसमलाई इत्यादि। फिर 8:15 बजे ब्रेकफास्ट जैसे बोलते हैं हम लोग, तो वो 8:15 बजे पूरी सब्जी हलवा इस तरह का भोग लगता है, कुछ स्वीट्स वगैरह। और फिर 12 बजे जो होते हैं राजभोग होती है, 11 से 12 बजे तक भोग का टाइम होता है, तो राजभोग में 3-4 सब्जियां होती है, चटनी, राइस दो टाइप के होते हैं, रोटी, दाल इत्यादि इत्यादि। और फिर शाम को भी मतलब फ्रूट्स वगैरह भोग लगाते हैं, और रात को दूध और ये सब लगा कर भगवान को शहन
1: जी। विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग में ऐसा कोई विशेष भोग रहता हो जो विशेष लगाया जाता
0: है? रानी को तो बहुत प्रिय है अरबी
1: जी,
0: हम लोग राधा रानी के लिए ज्यादातर अरबी की सब्जी बनाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया कि राधा रानी को बहुत ज्यादा अरबी पसंद थी। और बाकी कृष्ण तो सब कुछ खा लेते हैं, और तो मक्खन भी चोरी करके खाते हैं एक दूसरे का, बाल बाल सब जब उनके अपने घर से खा बना के लेके आते थे तो उनसे भी छीन के खाते थे। कृष्ण जी के लिए कोई परहेज नहीं है, वो हर चीज़ खाते हैं, बाकी राधा रानी के लिए अरबी।

0: ठाकुर जी के श्रृंगार के काजे यहाँ श्रद्धालु भक्तन में महिला विशेष रूप से ठाकुर जी को ताजा पुष्पन के संग श्रृंगार बनामे हैं, जैसे भगवान को श्रृंगार कियो जाए है, जामे नाना प्रकार के पुष्पन को प्रयोग करो जाए है, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली और कई प्रकार के विदेशी पुष्पन को प्रयोग करो जाए है, विविध प्रकार के ठाकुर जी के अलंकारण को ये भक्त महिला स्वयं बनामे हैं।
1: ये तो भक्त लोग आपस में एक दूसरे से देख के सीख जाते हैं, बाकी इंटरनेशनल सोसाइटी है तो हर प्रांत के लोग आते हैं, विश्व से हर एक प्रांत से लोग जुड़े हुए हैं, तो जिनको जो आता है फूल बनाना, किसी को माला बनाने आता है, किसी को कुकिंग करने आता है, किसी को झाड़ू मारने आता है, किसी को भगवान का श्रृंगार आता है, किसी का पिचिंग आता है, तो भक्त लोग अलग अलग कार्य में इंगेज रहते हैं।
0: यह इस्कॉन मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है और दूर दूर से श्रद्धालु जब वृंदावन के अन्य मंदिरों के दर्शन करने आमे हैं तो इस्कॉन मंदिर में अवश्य आमे हैं, क्योंकि यह मंदिर भव्य, दिव्य और भक्ति रस से परिपूर्ण है।

कृष्ण संकीर्तन में परम आनंद आवे है। तो आओ हमों करें श्री कृष्ण को नाम जप।

तो साथियों, यह कार्यक्रम में आज खूब हमने कृष्ण नाम जपो और कृष्ण संकीर्तन करो। ब्रज की माटी तो है प्रणाम में तो बहन रश्मि ने खूब बढ़िया वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को भी वर्णन करो, और दामोदर शर्मा के गाए या लोकगीत ने तो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। तो बस श्री कृष्ण के या प्यारे से लोकगीत के बाद अपने कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम करें हैं। सभी भैया बहनन को चंद्राक्षत्री की जय। श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 8 बजते हैं, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में

0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सख्त उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं

0: नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पी के मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और इसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से

0: कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृहमंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, The two leaders urged action against globally proscribed

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: आखिरी खत इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शब्द रचना कैफी आजमी की थी, संगीतबद्ध किया था खय्याम ने।
1: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
1: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसीलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सकीय सुविधा पाएं।
2: 1 से 31 जुलाई 2021 तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म बरसात से। इस गीत को अपना सुर दिया है लता मंगेशकर और साथियों ने।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म थी बरसात, शैलेंद्र के कंपोज्ड गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मिस्टर एंड मिसेस 55। अभी आपने सुना इस फिल्म में गीता दत्त और साथियों को। गीत के बोल मजरूह के थे, संगीत भी किया था ओपी नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में ये गीत। शैलेंद्र की शब्द रचना की धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म थी आशिक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के युगल सुरों में अभी आप सुन रहे थे वारिस फिल्म से लिया ये गीत। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: FM 102.2 पर। लीजिए सुनिए हिंदी वार्ता। आज का विषय लेकर आए हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर जेनेरिक दवाएं। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं निशा राठौर।
1: आम आदमी की पहुंच से दूर जेनेरिक दवाएं। सर्वप्रथम मैं श्रोताओं को यह बताना चाहूंगी कि दवाएं दो प्रकार की होती हैं, ब्रांडेड दवाएं और जेनेरिक दवाएं। ब्रांडेड दवाएं वह दवाएं हैं जो किसी नई बीमारी के होने पर जानवरों और मनुष्यों पर उनके परीक्षण करने के बाद स्वीकृत होती हैं। उसके बाद शोधकर्ता इन दवाओं का एक ब्रांड नाम रख देते हैं और पेटेंट के लिए स्वीकृति लेते हैं। पेटेंट लेने का अर्थ यह है कि शोधकर्ताओं की कंपनी के अलावा और कोई अन्य कंपनी इस दवा को तब तक नहीं बना सकती जब तक कि उस दवा के पेटेंट का समय खत्म नहीं हो जाता। सामान्यतः दवा के पेटेंट का समय जब से यह बाजार में आई है 10 से 15 वर्ष तक रहता है और इसे बाद में 5 वर्ष का एक्सटेंशन पीरियड भी आमतौर पर मिल जाता है। जब ब्रांडेड दवा के पेटेंट का समय खत्म हो जाता है तब अन्य कंपनियां उस दवा के उसी फॉर्मूला यानी उसी संगठन के साथ बनाती हैं, अर्थात अब अन्य कंपनियां इस दवा को कॉपी कर सकती हैं। इन्हीं कॉपी की गई दवा को हम जेनेरिक दवाएं कहते हैं। अन्य कंपनियों को दवा बनाने की शर्त यह होती है कि उनका उत्पाद यानी प्रोडक्ट ब्रांडेड दवा के एकदम अर्थात बिल्कुल समान हो। इसका अर्थ यह है कि जेनेरिक दवा

बाकी कंपनियों को इस दवा को बनाने के लिए न तो अधिक पैसा और न ही अधिक समय खर्च करना पड़ता है। इसके आविष्कार करने के लिए मेहनत, समय और पैसा भी नहीं खर्च होता है। इसके साथ ही साथ परीक्षणों और दवा की सुरक्षा की गारंटी और FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से स्वीकृति भी नहीं लेनी पड़ती है। इस वजह से जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं। क्योंकि कई कंपनियां इस दवा का उत्पादन कर रही होती हैं, तो प्रतिस्पर्धा स्वरूप जेनेरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं से बहुत कम हो जाती है। जेनेरिक दवाएं भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही उतनी ही प्रभावी व सुरक्षित होती हैं। एक कंपनी जो जेनेरिक दवा बनाती है, उसको यह सिद्ध करना होता है कि उसके द्वारा बनाई गई दवा का वर्शन 80 से 120% तक बायो इक्विवेलेंट होगा, अर्थात ओरिजिनल ब्रांडेड दवा जैसा ही प्रभावी होगा। उदाहरण के लिए, एक ब्रांडेड दवा की मात्रा मनुष्य के रक्त में 100 मिलीग्राम पहुंच रही है। जेनेरिक दवा तभी सुरक्षित और प्रभावी मानी जाएगी जबकि उसकी एक टैबलेट यानी एक गोली या कैप्सूल से 80 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक दवा मनुष्य के रक्त में पहुंचे। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ कंपनियां ऐसी जेनेरिक दवाओं का उत्पादन कर सकती हैं जिसकी 80 मिलीग्राम मात्रा रक्त में पहुंच रही है, तथा अन्य कंपनियां ऐसी दवा का उत्पादन कर सकती हैं जिसकी 125 मिलीग्राम तक रक्त में पहुंच रही है। अधिकतर दवाओं में यह अंतर अधिक मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ दवाओं में यह अंतर इश्यू बन सकता है क्योंकि कुछ बीमारियों में दवा की अति सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है। इन दवाओं को नेशनल थेराप्यूटिक ड्रग्स भी कहते हैं। इन दवाओं के उत्पादन के लिए विशेष कंसीडरेशन और अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। इनकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा मरीज के लिए विषैली अर्थात घातक हो सकती है। उदाहरण के लिए, वारफेरिन खून को पतला करने की दवा होती है जो अधिकतर हृदय रोगियों के काम आती है। दूसरी दवा डिजिओक्सिन है, यह भी खून को पतला करने के काम आती है। तीसरी दवा है थियोफिलिन, यह दवा अस्थमा यानी दमा के रोगियों और अन्य फेफड़े संबंधी बीमारियों के काम आने वाली दवा है। हालांकि FDA ने इन दवाओं के उत्पादन में रेस्ट्रिक्शंस के लिए कोई नीति नहीं बनाई है, लेकिन कुछ राज्यों में कानून बने हुए हैं। इन राज्यों में अगर ब्रांडेड दवाओं की जगह जेनेरिक दवाओं को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए अतिरिक्त सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सभी ब्रांडेड दवाओं की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछना होगा। कभी कभी डॉक्टर भी कुछ बीमारियों के लिए ब्रांडेड दवा लेने की सलाह देते हैं और पर्चे पर लिख देते हैं डू नॉट सब्स्टिट्यूट, अर्थात इसकी जगह आपको जेनेरिक दवा नहीं लेनी है। अगर उसकी जगह जेनेरिक दवा ले सकते हैं तो डॉक्टर पर्चे पर यह लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूशंस आर एक्सेप्टेबल, अर्थात उसकी जगह आप जेनेरिक दवा ले सकते हैं। इस प्रकार वही दवा आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी। जैसे एक जेनेरिक दवा का नाम मेटाफोर्मिन है, इस दवा का ब्रांडेड नाम है ग्लूकोफेज। यह दवा डायबिटीज बीमारी के काम आती है। दवाइयों के ब्रांड नाम सामान्यतः कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं जबकि जेनेरिक दवाओं के नाम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखे जाते। एक जेनेरिक दवा जो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम मेट्रोप्रोलॉल है जबकि इसका ब्रांडेड नाम लो प्रेशर है। बीमारियों में होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों का होता है। यह बात मैं राजस्थान सरकार का उदाहरण देकर कहना चाहूंगी। राजस्थान में एक मरीज ने आम तौर पर काम आने वाली दवाइयों का पर्चा डॉक्टर से लिया, फिर उन्होंने यह दवाइयां केमिस्ट की दुकान से खरीदी। दवाइयों की कीमत थी 2,151 रुपए। यह कीमत ब्रांडेड दवाओं की है। राजस्थान में जेनेरिक दवाओं की अलग से दुकानें खुली हुई हैं। फिर यही पर्चा उन्होंने जेनेरिक दवाओं को बेचने वाले दुकानदार को दिखाया तो उसने उन दवाओं की कीमत 354 रुपए बताई। दवाइयों की कीमत में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दिया। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तरह केमिकली इक्विवेलेंट और 30 से 80% तक सस्ती रहती हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तरह प्रभावी, सुरक्षित और गुणवत्ता में समान होती हैं। राजस्थान में चित्तौड़ के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर कोई अन्य कंपनी इस दवा को तब तक नहीं बना सकती जब तक कि उस दवा के पेटेंट का समय खत्म नहीं हो जाता। सामान्यतः दवा के पेटेंट सुमित शर्मा ने कम कीमत में मिलने वाली जेनेरिक दवाओं की शुरुआत की है। वास्तव में इन दवाओं की कीमत बहुत कम होती है, पर हम जो दवाएं बाजार से खरीद कर लाते हैं वह 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तथा 50 गुना दामों से ज्यादा दर पर हम खरीदते हैं। अगर हम अपने देश के बारे में सोचें, जहां 40 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, जहां एक

0: कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, ऐसे में वह इतनी महंगी दवा कैसे खरीद सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि स्वतंत्रता के 67 वर्ष बाद भी आज दवाएं महंगी होने के कारण वह साधारण जनता की पहुंच से बहुत दूर हैं, अर्थात साधारण जनता उनका लाभ नहीं ले पा रही है। उदाहरण के लिए डायबिटीज की दवा जो कि ब्रांडेड है वह 117 रुपए में एक गोली आती है और जेनरिक दवा में 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली आ जाती है। 1 रुपए 95 पैसे की 10 गोली में उसकी उत्पादन लागत, ट्रांसपोर्टेशन और रिटेल मार्जिन का खर्चा भी शामिल है। इसी तरह ब्लड कैंसर या खून के कैंसर की ब्रांडेड दवा बहुत महंगी है। इस बीमारी की 1 महीने की ब्रांडेड दवा 125,000 रुपए की आती है, जबकि जेनरिक दवाओं में इसकी कीमत काफी कम है। एक कंपनी 10,200 रुपए में यह दवा बेचती है, दूसरी कंपनी ब्लड कैंसर की ये दवा 8,800 रुपए की बेचती है और तीसरी कंपनी यही दवा जो 1 महीने के लिए होती है 6,500 रुपए में बेच रही है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि चिकित्सक यानी डॉक्टर्स हमारी पर्ची पर जेनरिक नाम न लिखकर ब्रांडेड दवा का नाम लिखते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और यह कहते हैं कि आप हमारी दवा ही लिखना, यह बेहतरीन है, इससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर दबाव डाला जाता है, यह बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तविक कीमत से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ा देता है। सरकारी सप्लाई के लिए अखबारों में जब दवा के टेंडर भरवाए जाते हैं तो अच्छी रेपुटेड कंपनियां 70 रुपए की दवा 5 रुपए में, 30 रुपए की दवा 3 रुपए में देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियां कम दामों में सप्लाई कर सकती हैं, पर उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर यह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। प्रतिवर्ष हमारा देश विदेशों में लगभग 45,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाएं निर्यात कर रहा है। वह सस्ती दवाएं विश्व भर में बेच रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि यह जेनरिक दवाएं हमारे देश में हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसी सिलसिले में एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि मेरी कामवाली का 4 साल का बच्चा, जिसको गर्मियों में उल्टी दस्त हो गए थे, जब उसकी माँ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको जो दवा लिखी वह 400 रुपए की थी। वह दवा उसे 1.5-2 रुपए में मिल सकती थी। मेरी कामवाली 400 रुपए की दवा नहीं खरीद सकी। वह बच्चा रात भर उल्टी दस्त करता रहा और सुबह खत्म हो गया। आजादी के 67 वर्षों के बाद अगर हमारे देश में कोई बच्चा उल्टी दस्त से मर जाए, यह हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। इसे रोकने के लिए हमें समन्वयित और संगठित प्रयास करने की जरूरत है। सभी डॉक्टर्स बुरे नहीं हैं। 50-60% तक डॉक्टर्स चाहते हैं कि मरीज कम कीमत की दवा में ठीक हो जाए। हमेशा डॉक्टर्स को दोषी नहीं मानना चाहिए। जेनरिक दवाओं को साधारण जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास धारा के विपरीत जाने का प्रयास है। यहाँ धमकियां हैं, माफिया हैं और लालच है। हमें इस शोषण की व्यवस्था को खत्म करना होगा, इसको बदलना होगा। उसको आसानी से बदला जा सकता है। हमें कोई नई फैक्ट्री नहीं खोलनी है, हमें कोई नई दवा नहीं बनानी है, संगठित और समन्वित कोशिशें करनी है। जो गलत हो रहा है उसे रोकना है। जेनरिक दवा की कीमत कम होती है, उसको बनाने का खर्च काफी कम होता है। जेनरिक दवाओं की दुकानें खोलने पर यही दवाएं हमें कम कीमत पर मिल सकती हैं। अंत में मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि जहां तक संभव हो सके जेनरिक दवाओं का ही प्रयोग करें। ये दवाएं जिला अस्पताल और उसके आसपास के मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इस संदर्भ में हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जेनरिक दवाओं को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित कर आम आदमी को सुलभ कराएं, जिससे कि कोई गरीब, असहाय या वृद्ध व्यक्ति दवाओं के अभाव में दम न तोड़ सके।
1: हिंदी वार्ता में अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था आम आदमी की पहुंच से दूर जेनरिक दवाएं। इस विषय पर जानकारी दे रही थी निशा राठौर।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से।

0: जो जुड़ा हुआ है नो ट्रैफिक नो टेंशन
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद।

इंसान को छह चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होगी जिले की हलचल।

0: मैनपुरी जिलों की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
2: मेरा नाम यश कुमार है। ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं PFPO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
1: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान

0: ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
1: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
2: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव की वजह से वर्षा की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिनी के विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क भी विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
4: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्रीदेवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4 से 5 हजार व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगाओं के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग

0: द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आवो हवा आज का विषय लेकर आए हैं मेडिकल कचरे का निस्तारण। आलेख व वाचन KRS खिंची का है।
3: खतरनाक मेडिकल कचरे को विशेष सावधानी पूर्वक संचालित करना आवश्यक है। इस कचरे को इंसिनरेटर भट्टी में उस उच्च ताप पर दहन करना आवश्यक है जिस पर मेडिकल कचरे में उपस्थित सभी केमिकल्स व अन्य अपशिष्ट पदार्थ, जल, कार्बन आदि पूर्णतः अपघटित हो जाएं। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इंसिनरेटर भट्टी से केवल गैसें ही बाहर निकलें, जबकि खतरनाक कचरा पूर्णतः जल जाए। ऐसा कचरा जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित होते हैं रेडियो एक्टिव कचरा कहलाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का मेडिकल कचरा साधारण कचरे की श्रेणी में आता है। कितने ही स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि मेडिकल कचरे का निस्तारण सही प्रकार से नहीं करते हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र अपने नाम के विपरीत वास्तव में जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल कार्य करते हैं। पर्यावरण प्रदूषित सामग्री का गलत तरीके से निस्तारण कर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं और स्थापित कानून का उल्लंघन करते हैं। इंसिनरेटर भट्टी में खतरनाक मेडिकल कचरे को जलाने पर डाइऑक्सिन, एसिड व खतरनाक धातुएं जैसे पारा तथा अन्य जहरीले केमिकल्स उत्सर्जित होते हैं जो हवा में घुलकर या जमीन पर फैलकर विभिन्न जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करते हैं। कई बार ये खतरनाक पदार्थ पानी में मिलकर व्यापक असर दिखाते हैं, यहाँ तक कि वन्य एवं जलीय जीव जंतुओं को काफी नुकसान पहुँचाते हैं। भोजन श्रृंखलाओं के जरिए जंतुओं में इसकी मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। डाइऑक्सिन भी पारे की तरह खतरनाक होता है। पारा तथा डाइऑक्सिन मछलियों के अंडों से नई संततियों में पहुंच जाते हैं और आगामी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार मछलियों को खाने वाले पक्षी एवं उन पक्षियों का शिकार करने वाले सरीसृप भी पारे तथा डाइऑक्सिन को अपने शरीर में जज्ब करके उनसे होने वाले खतरों को भुगतते हैं। पारे के कारण इन जंतुओं के बच्चों के जन्म के समय बीमारियां व अकाल मृत्यु जैसे दुष्प्रभाव प्रकट होते हैं। मनुष्य में डाइऑक्सिन की उपस्थिति से

0: प्रजनन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम तथा इम्यून सिस्टम दुष्प्रभावित होते हैं। पारे के कारण मनुष्य के शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दे तथा फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। अवांछनीय भूमि पर मेडिकल कचरे के डालने से भूमि प्रदूषण होता है एवं वर्षा जल के साथ बहकर भूमि पर फैलकर अंततो गत्वा यह कचरा नालों से होकर तालाब व नदी में पहुंच जाता है। कई बार बच्चों को मेडिकल कचरे से संक्रमित सिरिंजें, शीशियां व अन्य मेडिकल वस्तुएं बीनने व उनसे खेलते देखा गया है, जो कि प्राण घातक होने के साथ ही उनके परिजनों तक संक्रमण पहुंचने का जरिया बनता है। मेडिकल कचरे के वन्य क्षेत्र में गैरकानूनी निस्तारण से वन्य जीवन प्रभावित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार मेडिकल कचरे के गैरकानूनी निस्तारण से सारा इकोसिस्टम प्रभावित होता है। भारत सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंतर्गत वर्ष 1998 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स की स्थापना की। ये रूल्स उन्हीं सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो कि मेडिकल कचरे का किसी भी रूप में संचालन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने वर्ष 2011 में इन रूल्स को संशोधित किया है, जिन्हें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 के नाम से जाना जाता है। इन रूल्स के अंतर्गत बायोमेडिकल कचरा पैदा करने वाले संस्थानों के संचालक मालिकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अधिकृत मान्यता प्राप्त करनी होगी तथा यह सदैव सुनिश्चित करना होगा कि उनके संस्थान में बायोमेडिकल कचरे के संचालन से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए उन्हें प्रत्येक आवश्यक कदम उठाना होगा। इन संस्थानों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, वेटरनरी इंस्टीट्यूशन, एनिमल हाउस, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, ब्लड बैंक आदि शामिल हैं। और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बायोमेडिकल कचरे से संबंधित विस्तृत अध्ययन से इसके बहुत से दुष्प्रभाव सामने आए हैं और यह साबित हो गया है कि यह कचरा मानव, पशु पक्षियों एवं पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरनाक है एवं समय रहते नहीं चेते तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे।
1: कार्यक्रम आबोहवा में आज का विषय लेकर आए थे मेडिकल कचरे का निस्तारण। आलेख व वाचन KRS खिंची का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित सजीव कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक ऐसे विचार के साथ जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, अवतरित होता है। कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये समझाया है, कभी भी कोई गलत काम मत करो, कोई बुरा काम मत करो। हर व्यक्ति की काम की परिभाषा अलग होती है, अच्छे बुरे की परिभाषा अलग होती है, लेकिन जो कहा जाता है अगर हम उन बातों पर अमल करें तो निसंदेह हम अच्छे बुरे में फ़र्क महसूस कर पाएंगे। बुरे काम का तात्पर्य मेरे हिसाब से जो है वो है कि किसी का नुकसान ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, और जहां तक हो किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से हर विचार को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। आज हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमने किसी के संग बुरा किया, किसी के संग हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपने मन को संतुष्टि दे दी। लेकिन कहीं ना कहीं समय का चक्र इस प्रकार घूम के आपके सामने आता है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको ये लगता है कि आपने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके संग गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। व्यक्ति को बुरे काम का नतीजा तब समझ आता है जब उसके संग गलत होता है। अपने अभिमान में, अपने पद के अभिमान में, अपनी प्रतिष्ठा के अभिमान में, अपने पैसे के घमंड में व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर देता है जो सामने

वाले व्यक्ति के लिए निसंदेह परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति वो परेशानी अपने सामने देखता है, समझता है, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है, अच्छा कर्म करोगे तो आपके संग ईश्वर है। ईश्वर सब देखता है, उसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है।

0: लेकिन वर्तमान समय में स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। खेलो इंडिया अभियान के तहत बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसके द्वारा वो खेलों को खेल सके और इसमें अपना भविष्य बना सके। माता-पिता को भी समझाया जाता है कि अगर बच्चे अच्छा खेलते हैं तो उसमें उनको बढ़ावा दें। सभी माता-पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे के मन के मुताबिक उसको खेलने दें। क्या पता उनका बच्चा भी आगे चलकर उस खेल में इतना अच्छा प्रयास करे, इतना अच्छा प्रदर्शन करे, उससे न केवल वो अपने देश का नाम रोशन करे, अपने माता-पिता का नाम भी रोशन करे। फिर हर माता-पिता गर्व से कह सके कि हाँ, हमने अपने बच्चे को खेलने दिया, आगे बढ़ने दिया। बच्चे जब खेलते हैं तो उनकी पूरी सुविधाओं का ध्यान भी सरकार के द्वारा रखा जाता है, उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, उनको निरंतर सुविधाएं मिलती रहें, पारितोष मिलता रहे ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते रहें और अच्छे तरीके से खेल सकें। उनके लिए कई तरह के स्टेडियम का भी निर्माण किया जाता है, कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे जनपद में भी खिलाड़ियों को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है, उनके लिए कई तरह की सुविधाओं का आयोजन किया जाता है, कई तरह के पारितोषिक का भी आयोजन किया जाता है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर हमने बातचीत करी, हमारे साथ हैं जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री आज़ाद जी। सर, ये बताएं, क्या खिलाड़ियों को खेलने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है या उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है जिससे वो जो भी खेल सकें पूरे मन लगाकर खेल सकें और उसमें सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ सके और उसी में ही अपने करियर का निर्माण कर सके।
1: आकर्षक अमाउंट में पैसा देती है खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए।
2: सर, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को खेल कूद के लिए कई तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे कि बाहर के देशों में होती हैं, क्या गणेशरा स्टेडियम में हमारे मथुरा जनपद के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं?
1: हाँ, अभी बास्केटबॉल का हमारे पास सिंथेटिक कोर्ट है और फेंसिंग के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इसके लिए इंडोर बन जाए और कबड्डी कोर्ट के लिए भी इंडोर बन जाए। अभी MBDA के साथ मीटिंग हुई थी तो ट्राइंग की कि वहाँ पर ये कुछ नया इनोवेशन हो जाए।
2: खेलो इंडिया मूवमेंट के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जाता है, क्या ये मूवमेंट गांव-गांव अंदर जो इंटीरियर क्षेत्र हैं उनके लिए भी उतना ही कारगर है, क्या सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए ये मूवमेंट लागू है?
1: नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है। ये हम लोग ये प्रेस में रिलीज करते हैं, हम लोग 15 बच्चे 15 लड़कियां लिए जाते हैं इसके अंदर थ्रू सिलेक्शन और उनको नहीं डेली सुबह शाम उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें नहीं भारत सरकार द्वारा मतलब कि खेलो इंडिया द्वारा ही इनको किट प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि जो किट पहनते हैं बच्चे वो खेलो इंडिया द्वारा ही दी जाती है।
2: कई सारी व्यवस्था निःशुल्क है क्योंकि आज के समय में लोग खेलों को चुनना इसलिए पसंद नहीं करते कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करें या खेल खेलें, क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, सब निःशुल्क है?
1: निःशुल्क तो नहीं बोलेंगे हम, निःशुल्क क्या है कि हमारे पूरे साल भर की जो फीस है वो 210 रुपया है।
2: ये तो बहुत ही मामूली फीस है,
1: बहुत मामूली। हाँ जी जी जी, खिलाड़ियों के लिए 210 रुपये है मात्र, जो कि पूरे साल अंडर कोच के अंडर वो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे।
2: क्या प्रशिक्षक भी अनुभवी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पढ़े हुए वही नियुक्त किए जाते हैं?
1: हाँ, ये जितने भी NIS डिप्लोमा इन कोचिंग कर आते हैं, जो खेल निदेशालय द्वारा चयनित अंशकालिक प्रशिक्षक हमारे को प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, बहुत वेल ट्रेनर हैं और साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ में वो ट्रेनिंग कराते हैं खिलाड़ियों।
2: क्या खिलाड़ियों को कुछ प्रोत्साहन राशि या कुछ धनराशि दी जाती है जिससे अगर प्रोत्साहन मिले तो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है ताकि वो और अच्छा खेले?
1: हाँ बिल्कुल, अभी जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेट लेवल का, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे प्रतिभाग करते हैं, इसमें बच्चे का जाने आने का खर्चा है जो कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मतलब खेल विभाग वहन करता है, खाने से लेके उसके रहने तक का और जाने आने का खर्चा सेकेंड क्लास का ये बेयर करता है खेल विभाग।
2: क्या बालक बालिकाओं के लिए प्रशिक्षक अलग अलग होते हैं, बालक के लिए पुरुष और बालिकाओं के लिए महिला?
1: अभी फिलहाल जो है वो ऐसी सुविधा नहीं है, बालक

श्रोताओं, बरसों से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगी खराब। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा खेलों में अपना भविष्य बनाए, और अगर वो खेलों में अपना भविष्य बनाना भी चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में ही अपना भविष्य बनाए।

0: और बालिकाएं एक ही कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे फेंसिंग है तो फेंसिंग के कोच हमारे पास जेंट्स हैं, तो बालिका भी आ रही हैं, बालक भी आ रहे हैं। फुटबॉल है तो फुटबॉल में हमारे पास महिला कोच है, तो वो बालकों को भी ट्रेनिंग करा रही है और बालिकाओं को भी ट्रेनिंग करा रही है।
1: जब भी बालिकाएं घर से निकलती हैं तो माता पिता की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। गणेश स्टेडियम बहुत इंटीरियर में जाके पड़ता है, क्या बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन भी उतने ही सतर्क है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास यहाँ ये होमगार्ड लगे रहते हैं गेट के ऊपर में, और साथ में कोचेज सारे विजिलेंट रहते हैं, सबकी नजर रहती है खिलाड़ियों के ऊपर में, अपने अपने एरिए में अपने अपने ट्रेनिंग कराते हैं। जब बच्चे सब चले जाते हैं उसके बाद ही हमारे कोचेज यहाँ से जाते हैं।
1: क्या छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है बच्चों के लिए?
0: मथुरा में अभी नहीं है, बाकी के मंडलों में है, आगरा मंडल में है, गोरखपुर मंडल में है, लखनऊ में है, जितने भी मंडल हैं वहाँ पर छात्रावास हैं, जिले में अभी नहीं है हमारे मथुरा में।
1: अगर कोई व्यक्ति गणेशवर स्टेडियम में जो भी गतिविधियां होती हैं खेलों को लेकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, उनमें उस दाखिला लेना चाहे, तो अगर उसे कोई फॉर्म फिल करना पड़े या कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा पोर्टल जिस पे जाके वो संपूर्ण जानकारी हासिल करे, चाहे वो दूर दराज का ही बच्चा क्यों ना हो?
0: हाँ बिल्कुल, खेल साथी पोर्टल है हमारा उत्तर प्रदेश खेल विभाग का, उस पे जाके एडमिशन फॉर्म भी भर सकता है आपका, स्पोर्ट्स कॉलेजेस के लिए फॉर्म भर सकता है, और उसमें सारी न्यूज अपडेट होती रहती है कब स्पोर्ट्स ट्रायल हो रहे हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के लिए और स्पोर्ट्स कॉलेजेस के लिए अपडेट है, और खेल साथी पोर्टल है जो हमारा, उसके अंदर वो लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, अपना सारी जानकारियां ले सकते हैं।
1: क्या इसमें राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, ये सारी फॉर्मेलिटी फिल करनी पड़ती है या मात्र
0: आधार कार्ड और दो फोटोग्राफ की जरूरत होती है एडमिशन करने के लिए? दो फोटोग्राफ चाहिए बच्चे का और एक आधार कार्ड की कॉपी, वो लेकर आए और नहीं कार्यालय दिवस में और नहीं अपना वहाँ पर फॉर्म फिलअप करके उसका एडमिशन हो जाता है।
1: क्या सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ही आ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी क्या यहाँ आकर कोचिंग ले सकते हैं?
0: ये ओपन फॉर ऑल है
1: जी,
0: प्राइवेट कॉलेज के भी हों, प्राइवेट स्कूल्स के हों, ये चाहे सरकारी बच्चे हों, सभी के लिए अलाउड है, यहाँ पर ओपन फॉर ऑल है।
1: क्या यहाँ के जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और देश स्तरीय जो भी प्रतियोगिताएं होती है उसमें भाग लेते हैं?
0: बिल्कुल, अभी जैसे कि अभी आपको पता ही चला है कि बॉक्सिंग का ट्रायल है जिला स्तरीय, तो अभी ये 3 बजे से जिला ट्रायल होगा यहाँ पर, और इसके बाद ये मंडल के लिए जाएंगे, मंडल में फिर वहाँ पर कंपटीशन होगा, मंडल से फिर चयनित होके वो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
1: आपने जिक्र किया बॉक्सिंग का ट्रायल है यहाँ पर, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दीजिए ताकि जो बच्चे हैं उनके भावक ये इंटरव्यू सुने उन्हें पूरी जानकारी मिल सके।
0: हाँ, जो बच्चा बालक और बालिका 2010 और 2011 के बीच के मध्य में उनकी जन्म तिथि है वो, और बॉक्सिंग जानते हैं और बॉक्सिंग करते हैं कहीं भी करते हैं, वो आके आज ट्रायल 3 बजे दे सकते हैं आके, और यहाँ पर चयनित होने के बाद में उनका 4 तारीख को शाम को 4 बजे आगरा में ट्रायल होगा, उसके बाद एक मंडल की टीम बनेगी आगरा की।
1: क्या यहाँ आने के लिए अपने साथ कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ फॉर्म वगैरह लेकर आने हैं, कुछ राशन कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, कुछ फोटो कॉपी?
0: हाँ, आपने लिए DOB सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की कॉपी ये लेकर आए।
1: क्या अपने स्कूल के खेल टीचर या अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ लेटर वगैरह लिखवा के लाना पड़ेगा कि हमें यहाँ स्कूल में?
0: नहीं, ये ओपन ट्रायल है तो ओपन नहीं जरूरत होती है।
1: क्या आपको लगता है कि ये जो सुविधाएं दी जा रही है कहीं ना कहीं हमारे देश में जो खेल प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं, छुपी हुई हैं, उनको बाहर निकालने में एक उपयोगी कदम है?
0: बिल्कुल डेफिनेटली, ये बहुत उपयोगी है कि बच्चा मतलब ग्रामीण क्षेत्र से भी निकल कर आए और ये अपना मेहनत करे, प्रैक्टिस करे और आगे बढ़े, और हम लोग इसके जरिया हैं।
1: आज के समय में भी माता पिता की जो सोच है वो वही है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, या आजकल माता पिता का उद्देश्य यही रहता है कि हमारा बेटा जाए, बच्चा जाए तो क्रिकेट खेले, क्योंकि वहां पर उन्हें जो संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती हैं, किसी और के लिए माता पिता उतने उत्साहित नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से?
0: हाँ, जैसे कि इंडिया में क्रिकेट काफी पॉपुलर है,

0: क्योंकि आईपीएल चल रहा है और ये काफी अच्छा पैसा है, ग्लैमर है उसके अंदर में, और रदर देन अदर गेम्स में, अदर गेम्स में थोड़ा सा कम है लोग, ज्यादा रुझान क्रिकेट में करते हैं। और अपने गणेशा स्टेडियम में क्रिकेट का भी कोई कैंप नहीं है, वो बाकी के अदर गेम्स चलते रहते हैं।
1: अक्सर सुनने में आता है कि फलाना कॉलेज में इस खेल को लेकर ये कैंप लगा, वहां पे कुश्ती की ट्रायल हुई, किसी और चीज की ट्रायल हुई, क्या इन सब का संबंध गणेशा स्टेडियम में होने वाले ट्रायल या वो सरकार से संबंध है?
0: जैसे स्कूल लेवल का टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये तो स्कूल का ही होता है, जैसे डीआईओस है और बेसिक शिक्षा है, ठीक है ना, वो स्कूल लेवल का वो कराते हैं। हम लोग कराते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें ना कि सारे स्कूल्स आके यहाँ प्रतिभाग कर सकते हैं, कॉलेजेस अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हम लोग ओवरऑल पार्टिसिपेशन कराते हैं।
1: खेल अधिकारी होने के नाते आप सभी श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, मैं सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, और मैं अभी रिसेंटली यहाँ पर 1 महीने पहले ज्वाइन किया हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं स्टेडियम में रहता हूँ तो बहुत सारे एथलीट आते हैं, बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं, बहुत सारे फेंसिंग प्लेयर्स हैं, उनको जब मैं प्रैक्टिस करते देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं को बस यही चाहूंगा कि मथुरा वासियों से कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए जरूर 1 घंटा या 2 घंटा निकालने के लिए बोलें, और अपना फिजिकल फिटनेस जरूर करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहे ना चाहे, लेकिन 2 घंटा फिटनेस के लिए जरूर दे। अगर उसका मन करेगा स्पोर्ट्स में जाने का तो वो बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी है, बहुत अच्छी नौकरियां भी हैं, और सरकार पूरी हेल्प भी कर रही है सभी खिलाड़ियों के लिए।
1: सर, आपने जिक्र किया कि बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत अच्छी नौकरियां हैं। एक खेल खेलने से क्या किसी व्यक्ति को नौकरी लग सकती है? ये नौकरी के लिए तो हमेशा बड़े बड़े इंटरव्यूज, बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं।
0: जी, अभी रिसेंटली देखेंगे आप, पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी तक बनाए हैं, हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाता है और कॉमनवेल्थ गेम्स में चला जाता है, ओलंपिक्स खेल लेता है, एशियन गेम्स खेल लेता है, उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है। ये अभी कई लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली ये जॉब पाए हुए हैं।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। गर्मी व उमस में फ्रिज का पानी दे रहा बीमारी। उमस भरी गर्मी के बीच फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी लोगों को सेहत पर भारी पड़ रहा है। तेज धूप से घर लौटते बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने और ठंडे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने से बुखार, गले में संक्रमण, सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज बुखार और वायरल संक्रमण की शिकायत लेकर उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर रवि महेश्वरी ने बताया कि धूप से तपे शरीर का तापमान अचानक ठंडे पानी से प्रभावित होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। इससे गले में खराश, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बाहर से आने के तुरंत बाद फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पहले कुछ देर सामान्य तापमान पर शरीर को सहज होने दें, फिर सामान्य ठंडा हल्का ठंडा पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, नींबू पानी, अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें, लेकिन अत्यधिक ठंडे पेय से बचें। CMS डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने लोगों से बिना चिकित्सीय सलाह के दवा लेने से बचने और लगातार बुखार, गले में दर्द या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नए बस अड्डे के निकट तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत बनाए जाए रेलवे अंडरपास का निचलीकरण का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। इसके बाद बुधवार रात सुबह से यह मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मथुरा भूतेश्वर रेलखंड पर आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस अंडरपास का कायाकल्प किया गया है। पहले इस अंडरपास की ऊंचाई बेहद कम थी, जिसके कारण अक्सर वहां बड़े वाहन फंस जाते थे और लंबा जाम लग जाता था। अब नए निर्माण कार्य के बाद इसकी भूमितल से ऊंचाई बढ़ाकर 3.7 मीटर कर दी गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यदि मौसम साफ रहा, भारी बारिश नहीं हुई, तो बुधवार सुबह इस अंडरपास को पूरी तरह आम जनमानस के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने कहा कि इस अंडरपास के खुलने से न सिर्फ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि पहले की तुलना में यातायात अधिक सुगम और सुरक्षित रहेगा। अब छोटे वाहन के साथ बड़े व्यावसायिक और आवश्यक वाहन सेवाओं वाले वाहन भी बिना किसी रुकावट के आसानी से यहां से गुजर सकेंगे। अब डालते नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। 1497 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने यूरोप से

भारत के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा लिस्बन से शुरू करी। 1776 में फिलाडेल्फिया अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा का पहला सार्वजनिक पाठ किया गया। 1907 में कलकत्ता में जमशेदजी एफ मंदन द्वारा एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस की शुरुआत की गई। 1954 में भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा बांध का उद्घाटन किया गया। वहीं 1972 में भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बेहतरीन बल्लेबाज सौरभ गांगुली का जन्म आज ही के दिन हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं 16 दिसंबर 2004 को प्रसार भारती या दूरदर्शन आकाशवाणी की डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का शुभारंभ किया गया। इसे शुरुआत में डीडी डायरेक्ट प्लस नाम दिया गया, जो अब डीडी फ्री डिश बन गया है। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों तक उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल सिग्नल पहुंचाना, जहां केवल या अन्य संचार सेवा नहीं पहुंच रही थी, यही इसका उद्देश्य है। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं, विषयों के बारे में जो होते आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हम उन विषयों पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में बारिश का माहौल शुरू हो चुका है, जगह जगह जल भराव की समस्या का हम सामना कर रहे हैं। हम शिकायत करते हैं नालियों में पानी भर गया है, नालियों में कचरा रुका हुआ है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी हो। अपने कूड़े को नालियों में ना डालें, जो अक्सर बहुत लोगों की आदत होती है। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज की प्रस्तुति सुरभि शर्मा की थी। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना जोश फिल्म से लिया ये गीत उदित नारायण अलका याग्निक के युगल सुरों में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

चल मेरे भाई। अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज को। हम आकाशवाणी की मथुरा और वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गीत फिल्म धूम 2 से। इस गीत को अपनी आवाज दी है सुनिधि चौहान ने।

मिशन कश्मीर। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज को। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बात कर रहे हैं। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म बादल से। इस गीत को अपने सुर दिए हैं उदित नारायण, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति ने।

कविता कृष्णमूर्ति सोनू निगम के युगल सुरों में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बादल से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को लेकर मैं आ गई हूँ, आपकी अपनी आरजे रश्मि।

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का, तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: मन को कि तूने क्या इशारा।
1: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी कैसे हैं प्रेम सिंह जी?
2: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया। और एक बार आपके साथ समझ लीजिए हमारा प्रणाम आपके द्वारा पहुंचा दीजिएगा, जय श्री महाकाल।
2: जी जी बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा के चरणों में आपका प्रणाम पहुंचा दिया गया, ऐसा समझिए आप।
1: जी बिल्कुल। और अभी वहां पर कैसा मौसम है?
2: जी थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे रुक रुक कर, और फसल लगा रखी है सोयाबीन की सभी किसानों ने।
1: जी
2: जी, और आपको बताऊं थोड़ी उमस भी हो रही है साथ बारिश के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्योंकि प्रॉपर जो है अभी मानसून अच्छे से नहीं आया है, और अभी एक कहीं कहीं शुरुआत हो चुकी है तो।
2: हाँ।
1: और इस समय श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है उज्जैन में?
2: जी अभी तो थोड़े कम ही श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब 15 दिन के बाद में काफी संख्या बढ़ जाएगी श्रद्धालुओं की।
1: जी क्योंकि सावन लग जाएगा।
2: हाँ जी बिल्कुल, सावन में तो ऐसा समझे कि मतलब रास्ते पे मतलब केवल वाहन तो बहुत कम रहेंगे और ज्यादातर श्रद्धालु ही रहेंगे, पैदल यात्री।
1: अच्छा, थोड़ी सी सोर्स लगा दीजिए ना हमारी भी।
2: जी जी बिल्कुल,
1: कि महाकाल फिर से हमें मतलब एक बार ही अभी करके आए कुछ टाइम पहले, लेकिन एक बार फिर से दर्शन करने के लिए बुलावा आ जाए।
2: जी बिल्कुल, आपका बुलावा जरूर आएगा आपको, और मैं तो यही चाहूंगा कि आप एक बार छोड़ के बार बार आइए।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने कह दी। और चलिए इसी बात के साथ जानना चाहूंगी आपकी पसंद भी।
2: जी आप महाकालेश्वर बाबा के लिए एक भजन कोई सा भी सुनवा दीजिए भोले बाबा का।
1: जी ठीक है
2: जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी मुझे भी। और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी
1: सादर नमस्कार
0: जी। सादर नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद वहाँ के बिहारी कृपा है और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। अच्छा प्रजापति जी, एक बात बताइए, क्या मतलब कभी आप जब भी इससे मतलब पहले कोई कुछ आप कोई ऐसा अनुभव रहा है क्या आपका लाइफ में कि आपने कभी हाथ में माइक लेकर कुछ कहीं मंच संचालन वगैरह किया हो?
1: नहीं जी, ऐसा हमें अवसर प्राप्त नहीं हुआ
0: नहीं,
1: है।
0: लेकिन जब आप बोलते हैं तो लगता है एकदम फ्लोलेस, आप एकदम धार धार धार धार धार।
1: जब मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से जुड़ा, हाँ? उसके पश्चात ये फोनिंग कार्यक्रम में

0: अपने हिस्सेदारी भागीदारी लगा, तब से थोड़ा बोलने का स्टाइल समझ में आने लगा। उससे पहले मैं बहुत ही संकोची और झिझकू डरालू प्रवृत्ति का मतलब था
1: जी।
0: और मुझे जब आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में पहली बार मेरी कॉल लगी थी और आदरणीय दीक्षित साहब मेरी वार्तालाप चल रही थी, मैं सिर से लेकर एड़ी तक पसीने में डूब गया, जबकि ठंड का महीना था।
1: और अब देखिए आप क्या बिंदास बातें करते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो आप लोगों के साथ और रेडियो का जो संगत है इसका प्रभाव है।
1: चलिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपने बात कही कि लोगों के अंदर जो डर है, जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, वो खत्म हो रहा है और लोग इम्प्रूव कर रहे हैं रेडियो के साथ, एकदम कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं। और उनकी बातें और हमारी बातें बहुत बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है।
0: जी, आप जब भी कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, आप ओपनिंग जो करती हैं कार्यक्रम का हेलो आकाशवाणी, वो हर बार कुछ न कुछ बदलाव करती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आकर्षक रहता है। हम ये प्रयास करते हैं कि शुरू से आपकी बातें सुने, जब आप कार्यक्रम को प्रारंभ करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक और गीत के साथ में अपने डायलॉग बोलती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर।
1: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। और बस यही लगता है कि कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे और एक ही पैटर्न पर हम ये कार्यक्रम पेश ना करें, कुछ न कुछ उसमें विविध का करने का प्रयास जरूर रहता है। तो चलिए पसंद बता दीजिए अब अपनी।
0: जी, आपका प्रयास, आपका मेहनत है बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है और आप बधाई के पात्र हैं। दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कुदरत, सुरेश वाडेकर और आशा भोसले जी ने गीत को गाया है। सावन नहीं भादव नहीं।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो आकाशवाणी।
1: अरे वाह वाह, सुभाष गर्ग का जी दीदी, प्यार भरा नमस्कार, मीठा मीठा गुलाबी गुलाबी।
0: ओए होए होए, मैं भारी जावा इस प्यार भरे नमस्कार पर। हाँ, तो आज तो प्यार भरा नमस्कार मीठा मीठा भी है, गुलाबी भी है, क्या बात है।
1: जी दीदी, कभी कभी ऐसे भी आया करो और
0: हाँ,
1: शाम में निकले तो घर जाया करो।
0: क्या बात है।
1: आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, और
0: हाँ,
1: नाज भी कभी कभी तुम हमारे उठाया करो।
0: क्या बात है, क्या
1: जी
0: बात
1: दीदी, देखो बहनों के तो नाज नखरे उठाने
0: है।
1: पड़ेंगे।
0: बिल्कुल
1: गाना
0: बिल्कुल, उठाने
1: जी
0: पड़ेंगे
1: गाना
0: जी।
1: सुनना है, तभी दीदी
0: हाँ,
1: सुनाई।
0: तो इसलिए बटरिंग करनी पड़ेगी। हाँ।
1: जी, तो बाहर से ही लगा जा सकता
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: है।
0: आज क्या
1: जी
0: पसंद रहेगी सुभाष जी?
1: जी आज आपसे ये निवेदन करेंगे, बड़ा खूबसूरत गाना है, ये फिल्म का नाम है आखिरी खत। बहारो मेरा जीवन भी समारो,
0: जी।
1: कोई आए कहीं से यूं पुकारो।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में। आप कार्यक्रम में फोन करते रहते हैं?
1: जी मैडम करते रहता हूँ। आप लोग का प्रस्तुति अच्छा लगता है और हम लोग का उसके बाद प्रसारण सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी
1: और जी जुड़ते हैं, बहुत अच्छा होता है आपका केंद्र का प्रसारण, इसलिए मैं इसके मथुरा में जुड़ता हूँ, अच्छा लगता है।
0: जी
1: तो यहाँ मौसम तो मैडम रात को पानी गिरा है, ड्यूटी परेड में हूँ, चारों तरफ बादल किया है और पूरे दिशा तरफ काला किया है, कम काला किया है लेकिन उत्तर दिशा तरफ भी किया है, मतलब चारों तरफ किया है मैडम। पानी अचानक आता है, वो जब गिरने का समय रहता है तो फिर वो मौका नहीं देता है।
0: चलिए, बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गाना उमड़ घुमड़ कर आपकी जुबान तक आ रहा है, उसे हम तक पहुंचा दीजिए।
1: फिल्म का नाम है सर,
0: जी
1: वो गीत के बोल है, सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन।

0: नीचे लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहा
1: हूँ। मैं अच्छा मैं आता हूँ। ओके क्लास 5 मिनट का ब्रेक, अगला क्लास नीचे। ओके अभी आता हूँ।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते,
3: मैं आकाश बोल रहा हूँ मैम, मैं मोरेगांव से।
2: जी क्या करते हैं आकाश जी?
3: वैसे तो कुछ नहीं करते, एक पशु पक्षी हो के देखा वारी करते हैं अपने घर वाले।
2: अच्छा चलिए, और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं?
3: हाँ जी, हाँ जी, आपके आकाशवाणी के कार्यक्रम हम डेली बेस सुनते हैं। सर मैम वो गाना सुनना चाहता हूँ मैं, पंचेश्वर में गाते हैं बम्बे गुनगुनाते हैं।

अभी आपने सुना हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज कार्यक्रम पेश कर रही थी रश्मि शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

लोफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में है, फिल्म का नाम है आराधना। आनंद बख्शी का गीत है, संगीत SD बर्मन का।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर और मुकेश को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। नीरज का गीत था, संगीत सचिन देव बर्मन का। और लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में पेश है श्री 420 फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की। शैलेंद्र का गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के गाए श्री 420 फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए अब पेश है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत बात और SMS। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। अपने सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस नगमे के साथ।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती, गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइशकर्ता हैं पटेल नगर मलोट पंजाब के डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली के श्रोता बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। गांव चौहलदा बागपत से हमसे जुड़े हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। आप हैं बंदे बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें भेजा है नेहरू चौक पैंठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव ने। जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। आप हैं बक्सर बिहार के श्रोता शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा। ये संदेश हमें भेजा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत रामदेव और धर्मदास वासवानी ने। अगले फरमाइश करता है हमारे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका यादव। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से। ये संदेश हमारे पास आया है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब का। आप हैं सरगांव बाजार छत्तीसगढ़ के श्रोता नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान और फैजान मोहम्मद। राजनगर मधुबनी बिहार के श्रोता हैं शारदा गुप्ता, कंचन माला मिश्रा, रुद्र गुप्ता, कुशेश्वर, कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, मुकेश गुप्ता, नीलम, रश्मि, कुसुम और इनके बहुत सारे संगी साथी। ये संदेश हमें भेजा है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी ने। और आप हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर के श्रोता हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। आइए मित्रों सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने कामचोर फिल्म का गीत सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सब श्रोताओं ने की। गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और यश वशिष्ठ ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइश करता है नसवाला चौक मलकापुर महाराष्ट्र से संजय पाटिल, उषा और प्रथमेश पाटिल। आप हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। शेगांव महाराष्ट्र से हैं रविंद्र इंगले, आम्रपाली, राजरत्न, प्रेरणा और रोहित। अगले फरमाइश करता है हमारे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के तुलसी मस्कीन, वीणा, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट के श्रोता ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से हमसे जुड़े हैं राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की और तानिया नारंग। ये संदेश हमारे पास आया है नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद का, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। गोविंदपुरा अहमदनगर से हमसे जुड़े हैं जुनैद मुजावर, सबिहा, मिखाइल मुजावर और जैनब। अगले फरमाइश करता है सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ के फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। आप हैं संजय कॉलोनी खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी। ये संदेश भेजा है हमें गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी सावनकर ने कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उमेश और प्रमिला बंछोर, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अगले श्रोता हैं हमारे अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। और आप हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार के श्रोता फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। ये संदेश हमें भेजा कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम ने। और एक और संदेश लेते हैं, आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए मित्रों आपको सुनवाते हैं एक और फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने इस गीत को सुनना चाहा। साथ हैं इनके गांधीनगर गुजरात के सुरेश राठौड़ और मंजुला राठौड़। इसी गीत को सुनना चाहते थे कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। अगला संदेश हमें भेजा है नाहर मंटोला मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली और शाहिद अली ने। आप हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु के श्रोता। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष रामगढ़ कैंट से हमसे जुड़े हैं, महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। ये संदेश हमें भेजा है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौरक सेन ने। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का संदेश प्राप्त हुआ। आप हैं सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्री निजा। ये संदेश आया है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। आप हैं जलालाबाद वेस्ट पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अगले फरमाइश करता है हमारे तेलीपाड़ा बिलासपुर छत्तीसगढ़ के गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक और आयुषी श्रीवास। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार के श्रोता। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम।

कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। और ये संदेश है अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले का। कुंभार गली श्री रामपुर महाराष्ट्र से। पुनावले पुणे से हैं अजय सोनबने, करिश्मा अविका और विशाखा सोनबने। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं गीत बात और SMS कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत।

मन्ना डे की आवाज़ में आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का गीत। गीत इंदिवर ने लिखा था, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, लॉयर्स स्टेट कॉलोनी गोवर्धन रोड मथुरा से ब्रजेश गौड़, सर्वेश गौड़, सुदर्शन और विष्णु प्रिया ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइश करता है हमारे आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आप हैं बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और बेबी ख्याति सारवा। यह संदेश हमें भेजा है गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। बेरडी मध्य प्रदेश से संदेश भेज रहे हैं हुकम करमरकर।

सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनया करमरकर। आप हैं छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम और अक्षय सेन। झज्जर हरियाणा से हमसे जुड़े हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। बीड शहर महाराष्ट्र से संदेश भेजा है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे और अंजलि करवा ने। साथ हैं बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पीबी कुलथे। ये संदेश हमें भेजा है सदर बाजार कुरावली के श्रोताओं ने। आप हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, महक, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल। और ये संदेश हमें भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रकाश जैन ने। लातूर से हैं संगीता जैन, सूरज जैन और पी आर जैन। इसी के साथ ही मित्रों, आज के गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रमोद कुमार शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: आइए आपको सुनवाते हैं प्रमोद कुमार शर्मा के ही स्वर में एक और ब्रजलोक गीत।

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम में हमारे आज कलाकार हैं प्रमोद कुमार शर्मा। आइए इन्हीं के स्वर में एक और ब्रज लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रमोद कुमार शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत आप इस समय सुन रहे हैं। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में

0: मैं अभी आपने सुने प्रमोद कुमार शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी मथुरा वृंदावन है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बदलती जीवन शैली में महिलाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और बेटी की शिक्षा में परिवार की भूमिका। इसी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अर्चना विमल द्वारा प्रस्तुत कहानी अनजाना मददगार। इसके अलावा आप सुन पाएंगे कुछ घरेलू टिप्स और फिल्मी गीत हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 का समय रहता है फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5:30 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना और साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विज्ञान वार्ता इंटरनेट का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष। वार्ता प्रस्तुत करेंगे निखिल चौधरी। इसके अलावा आप सुन पाएंगे कुछ फिल्मी गीत हमारे इसी कार्यक्रम में।

संध्या 6:15 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभ और कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से बेहतर खेती। स्थल ध्वनियांकन पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, गौ संवर्धन में किसानों की भूमिका। इसमें विभोर से दीपक गोस्वामी की बातचीत प्रसारित होगी। विभोर हैं गौ आश्रय प्रबंधक। इसके अलावा आप कुछ ब्रज लोकगीत भी हमारे इसी कार्यक्रम में सुन पाएंगे। भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा संध्या वंदन, संध्या 6:45 पर। शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत आप सुन पाएंगे भोजराज सिंह भोज का काव्य पाठ। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 8:30 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत आप हमारे सुहाने तराने कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आज आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी वादन। इनके साथ तबले पर संगत करेंगे पंडित विनोद लेले और आज आप प्रस्तुत करेंगे राग माल गुंजी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर. आइए सुनते हैं ये देशभक्ति पर गीत.

मीना और साथियों के स्वर में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे प्रेम धवन। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

बहनों, सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देने में भी अच्छा लगता है और मिल जाए तब भी अच्छा लगता है। तो एक दूसरे का सहयोग करते रहिए और सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आजकल की आधुनिक जीवन शैली और इसने महिलाओं के और सभी के जीवन में अनेक सकारात्मक अवसर प्रदान किए हैं। शिक्षा, रोजगार, तकनीक और आर्थिक आत्मनिर्भरता, इन सभी ने हमें नई पहचान दी। लेकिन इसके विपरीत बढ़ता हुआ कार्यभार, अनियमित दिनचर्या, तनाव, असंतुलित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डाला है। इसलिए आधुनिक जीवन शैली के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कई महिलाएं लंबे समय तक बैठकर काम करती हैं, जिसके फलस्वरूप मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पीठ और गर्दन के दर्द जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और अनियमित भोजन की आदतें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित कर देती हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद को न लेना, नियमित व्यायाम की कमी भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। महिलाओं में आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जैसी समस्याएं भी आम देखी गई हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवार और कार्यस्थल की दोहरी जिम्मेदारियां, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव तथा सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। अनेकों बार महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के कारण स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देती हैं, जिससे समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। तो इन चुनौतियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन चुनौतियों से बचने के लिए हमें नियमित जीवन शैली अपनानी चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार, नियमित योग और व्यायाम, पर्याप्त नींद, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक है। इसके अलावा परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना, ध्यान करना, अपनी रुचियों को समय देना और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह लेना भी लाभदायक है। इस प्रकार बदलती हुई जीवन शैली ने नई संभावनाएं और नई चुनौतियों को दोनों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। यदि महिलाएं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और

समाज और परिवार भी आवश्यक सहयोग प्रदान करे तो महिलाएं स्वस्थ, आत्मविश्वासी और संतुलित जीवन जी सकती हैं। एक स्वस्थ महिला न केवल स्वयं का बल्कि परिवार और समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो बहनों, ये तो हुई बात बदलती जीवन शैली में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर।

0: बहनों, हम सभी के रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इन रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना हमारे जीवन का आधार भी है। इनमें विश्वास, खुला संवाद, आपसी सम्मान, सहानुभूति, सहयोग और जिम्मेदारी, क्षमा और धैर्य, ये सभी रिश्तों के पहलू हैं। तो बहनों, एक दूसरे पर भरोसा रखना रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी और सम्मान के साथ साझा करना, एक दूसरे की राय, भावनाओं और व्यक्तित्व का सम्मान करना, एक दूसरे के दृष्टिकोण और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना, और सुख दुख और जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना, और छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करके क्षमा और धैर्य, ये सभी हमारे जीवन के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रही हैं अर्चना विमल। शीर्षक है अनजाना मददगार।
1: आज फिर अंकित के माँ बाप के बीच झगड़ा हो रहा था। अंकित जानता था कि लंबी बहस और झगड़े के बाद उसके माता पिता कई दिनों तक आपस में बात नहीं करेंगे। उनके बात करने का माध्यम वो स्वयं उसका छोटा भाई अर्पित होगा। अंकित के माँ बाप अक्सर ही किसी बात को लेकर आपस में उलझ पड़ते थे, किंतु उन्होंने अपना ये झगड़ा या बहस कभी भी अपने बेटों के सामने नहीं की। वे जब भी लड़ते अपने बंद कमरे में लड़ते। इसीलिए आज तक जब से अंकित और अर्पित ने होश संभाला, वे समझ ही नहीं पाए कि उनके माँ और पिताजी अक्सर किस बात पर उलझ पड़ते हैं। अंकित ये भी जानता था कि इस झगड़े में हमेशा माँ नाराज होती थी। अंकित के पिताजी तो उसकी माँ को हमेशा मनाने की कोशिश करते नजर आते, किंतु एक माँ थी जो पिताजी से हफ्तों हफ्तों न बोलती। अंकित ये भी जानता था कि उसकी माँ रश्मि स्वभाव से थोड़ी गुस्सैल है, और वो किसी की भी उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और सबसे ही उलझ पड़ती है। जबकि अंकित के पिता राकेश माँ के स्वभाव के विपरीत शांत सौम्य प्रवृत्ति के थे। किसी भी व्यक्ति से बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब भी बात करते बहुत शालीनता से मृदुवाणी में करते। माँ के साथ भी उनकी कोशिश प्यार मोहब्बत से रहने की होती, किंतु माँ किसी न किसी बात को लेकर अक्सर ही पिताजी से उलझ पड़ती। उस दिन इतवार था। अंकित और अर्पित बेंच लेकर अपने कमरे में लेटे हुए थे कि अचानक से माँ के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वे दोनों उनके कमरे की तरफ लपके। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि माँ रोती जा रही थी और सूटकेस में अपने कपड़े रखती जा रही थी। साथ में कहती जा रही थी, ठीक है, वह मेरी जैसी नहीं है ना, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है, तो तुम उसे ही अपने घर में अपनी बीबी और अपने बच्चों की माँ बनाकर रखना। मैं तो हमेशा के लिए जा ही रही हूँ इस घर को छोड़कर। क्या फायदा ऐसे आदमी के साथ रहने का। इतना कहकर अंकित की माँ रश्मि ने अपना सूटकेस उठाया और मुख्य दरवाजे की ओर लपकी। अंकित और अर्पित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोले, मम्मी आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? थोड़ा रुककर रश्मि बोली, जा रही हूँ बेटा, तुम लोगों से और तुम्हारे पिताजी से बहुत दूर। अब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नई मम्मी लाएंगे, अब तुम उसी को अपनी मम्मी समझना। जब रश्मि ये बातें अपने बेटों से बोल रही थी, तभी राकेश बहुत गुस्से में उसके पास आए और बोले, रश्मि तुम क्यों घर छोड़कर जाती हो? इन बच्चों को और इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। सारी गलती मेरी है, मैं ही जाता हूँ इस घर से, और दुआ करना कि फिर कभी तुम्हारा सामने न आऊं। इतना कहकर राकेश घर से बाहर चले गए। उनके पीछे उनके दोनों बेटे भागे, लेकिन वह ऑटो पकड़कर न जाने कहाँ चले गए। दोनों बच्चे घर वापस लौटे तो माँ को जमीन पर उदास और गमगीन हालत में बैठा पाया। अंकित ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है, आप दोनों क्यों अक्सर लड़ते रहते हो, अब पापा भी न जाने कहाँ चले गए। अंकित की ये बात सुनकर रश्मि अचानक से उठी और अंकित की बाहों को झंझोड़ते हुए बोली, बेटा जा अपने पापा को कहीं से भी ढूंढ।

करला, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ को ढांढस बधाते हुए अंकित बोला, आप चिंता ना करें माँ, पापा कुछ ही देर में लौटकर आ जाएंगे। आप प्लीज शांत हो जाइए और मुझे शांति से सारी बात बताइए। बेटी की बात सुनकर रश्मि बोली, बेटा तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए मुझे, लेकिन मैं आज क्या करूँ। मेरे झगड़े की वजह से तुम्हारे पिताजी आज गुस्से में न जाने कहाँ चले गए। दरअसल शादी से पहले तुम्हारे पिताजी जिस ऑफिस में नौकरी करते थे, वहाँ उनके साथ स्नेहा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। तुम्हारे पिताजी और स्नेहा आपस में प्रेम करते थे। बात शादी तक भी पहुँच चुकी थी, किंतु तुम्हारे दादाजी को ये रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि स्नेहा दूसरी जाति की थी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने अपने पिता की बात मानकर मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहा ने अपना ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करा लिया। तुम्हारे पिताजी कहते थे कि वो हमारी शादी के बाद उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे शक था कि वो अक्सर उससे मिलते हैं, इसीलिए मैं उनसे अक्सर इस बात पर लड़ती रहती थी। माँ की बात सुनकर अंकित बोला, तो क्या माँ पिताजी से ही आपको उस औरत के बारे में पता चला ना, या आपने कहीं और से सुना था। हाँ बेटा, मुझे शादी के शुरुआती सालों में कुछ रिश्तेदारों से तुम्हारे पापा के बारे में ये बात पता चली, और तभी से मैं उनसे इस बात के लिए अक्सर झगड़ती रहती। माँ की बात सुनकर अंकित बोला, माँ क्या आपने पापा को उस औरत से मिलते हुए देखा था, या किसी अन्य ने उन्हें या उस औरत से मिलते देखा और आपको बता दिया। रश्मि ने सुबकते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा और न ही मुझे किसी ने बताया, पर मुझे तुम्हारे पिताजी पर शक है। माँ की बात सुनकर अंकित बोला, माँ आप पापा जैसे व्यक्ति पर शक करती रही, मुझे नहीं लगता कि आपसे शादी करने के बाद पापा ने आपको कभी धोखा दिया हो। पापा को तो आप जानती है ना, पापा हमेशा सच बोलते हैं। जब पापा कहते हैं कि वो उस औरत से कभी नहीं मिले, तो वो नहीं मिले होंगे। आपको पापा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए था माँ, जब तक आँखों से न देख लो सुनी हुई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। बेटे की बात सुनकर रश्मि बोली, इसी बात का तो पछतावा है बेटा, मुझे तेरे पापा जैसे देवता स्वरूप इंसान पर शक नहीं करना चाहिए था। कुछ भी करो बेटा, अपने पिताजी को वापस ला दो, मैं अब कभी उनसे नहीं लड़ूंगी। खैर माँ आप पापा की चिंता मत करो, जल्द ही पापा आ जाएंगे, अंकित ने माँ को आश्वस्त करने की कोशिश की। 3 दिन बीत जाने के बाद भी राकेश का कोई अता पता न था। रश्मि और उसके दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल था। सारे रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लिया, किंतु राकेश का कुछ पता न चला। पुलिस ने भी काफी प्रयास करने के बावजूद राकेश का कई दिनों तक कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत गया। 12वीं करने के बाद अंकित का डॉक्टरी में चयन हो गया, किंतु रश्मि के सामने अब अंकित की पढ़ाई का खर्चा उठाने की समस्या आ गई, क्योंकि राकेश के जाने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। राकेश की सरकारी नौकरी तो थी नहीं, इसीलिए पेंशन मिलने का सवाल ही नहीं था। ऊपर से रश्मि भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जो कोई जॉब कर लेती, इसीलिए घर की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही थी। ऐसे में रिश्तेदारों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। ऊपर से अंकित के मेडिकल में चयन होने से रश्मि की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि रश्मि चाहती थी कि अंकित इस पढ़ाई को अवश्य पूरी करे, क्योंकि राकेश का सपना था कि अंकित बड़ा होकर डॉक्टर बने। अंकित और उसकी माँ इन समस्याओं का हल ढूंढ ही रहे थे कि अंकित के नाम डाक से एक ड्राफ्ट आया, साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, अंकित तुम अपनी पढ़ाई निश्चिंत होकर पूरी करो, तुम्हारी सारी पढ़ाई के खर्च का इंतजाम हो जाएगा। अब हर महीने तुम्हारे पास तुम्हारी फीस पहुंच जाया करेगी। दिलो जान से पढ़ाई करो और अपने पापा का डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा करो। आशा है तुम ऐसा ही करोगे। तुम्हारा एक शुभचिंतक। पत्र पढ़कर रश्मि और अंकित घंटों तक दिमाग मारते रहे कि ये रुपए किसने भेजे, किंतु उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। अब तो हर महीने घर पर पैसे आने लगे, पूरे घर की आर्थिक दशा अब थोड़ी सुधरने लगी। इस बीच रश्मि का छोटा बेटा गलत लोगों की संगति में पड़कर नशा इत्यादि करने लगा। जब रश्मि को इस बात का पता चला तो उसने अर्पित को खूब खरी खोटी सुनाई और डांट भी लगाई। अपनी माँ की डांट से क्षुब्ध होकर अर्पित घर छोड़कर चला गया। उसके घर छोड़ने की खबर सुनकर रश्मि को दिल का दौरा पड़ गया।
आनन फानन में उन्हें अस्पताल

भर्ती करना पड़ा, वह भी रश्मि के इलाज के लिए। रुपए का इंतजाम उसी अनजाने मददगार ने किया। अंकित ने मन ही मन सोचा कि माँ के इलाज के बाद वो उस अनजाने मददगार को जरूर ढूंढेगा। कुछ दिनों में माँ ठीक हो गई। माँ को घर छोड़कर अंकित ने उस मददगार को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। सफलता उसके हाथ लगी। उस पते पर पहुंचकर अंकित ने कॉल बेल बजाई तो दरवाजा एक बहुत ही भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला ने खोला। अंकित को सामने देखकर महिला थोड़ी सकुचा गई। अंकित ने कहा, आप कौन हैं और हमारी इस तरह मदद करने का आपका उद्देश्य क्या है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? पहले तो उस औरत ने बात को टालना चाहा कि तुम क्या कह रही हो बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आई?

0: पहुंचकर अंकित ने कॉलबेल बजाई तो दरवाजा एक बहुत ही भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व की महिला ने खोला। अंकित को सामने देखकर महिला थोड़ी सकुचा गई। अंकित ने कहा, आप कौन हैं और हमारी इस तरह मदद करने का आपका उद्देश्य क्या है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? पहले तो उस औरत ने बात को टालना चाहा कि तुम क्या कह रही हो बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो। ये सुनकर अंकित ने अपनी जेब से वो सब ड्राफ्ट और चेक निकालकर उस औरत के सामने रख दिए। ये सब देखकर उस औरत ने बोलना शुरू किया, हाँ ये सब मैंने भेजे थे, मेरा नाम स्नेहा है। किसी जमाने में तुम्हारे पिताजी और मैं एक दोस्त थे, हमारी शादी भी होने वाली थी, किंतु तुम्हारे दादाजी इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझसे शादी करने के इच्छुक थे, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते थे, किंतु मैंने ही उन्हें समझाया था। मैं उनके घर वालों का दिल दुखाकर उनसे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए हमने अपनी शादी का विचार त्याग दिया। तुम्हारे पिताजी की शादी तुम्हारी माँ से हो गई। यकीन करो, तुम्हारे पापा की शादी के बाद हम आपस में कभी मिले ही नहीं और न ही कोई कांटेक्ट रखा। मैं अपना ट्रांसफर कराकर दूसरे शहर में चली आई और आजीवन कुंवारे रहने का संकल्प ले लिया। करीब 6 महीने पहले मेरा ट्रांसफर इस शहर में हुआ। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे पिताजी और माँ के बीच हुए झगड़े का पता चला। दरअसल तुम्हारी माँ की एक खास सहेली ने मुझे ये सब बताया। बाद में तुम्हारे पिताजी के जाने की बात भी पता चली। मुझे काफी दुख हुआ। तुम्हारी माँ को उनसे ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी सचमुच बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। उनके जाने के बाद मुझसे तुम्हारी स्थिति भी छुपी हुई नहीं रह सकी, इसीलिए मैंने तुम लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी की हर चीज को मैं अपना मानती हूँ। जब मैंने देखा कि उनके बच्चे इतने कष्ट में हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस तरह तुम्हारी मदद की। तुम्हारा छोटा भाई भी मिल गया है, मैंने उसे शहर के ही एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया है और उसे काफी समझाया है। अब वो आगे जीवन में सुधरना चाहता है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ को बता देना और हाँ, एक दिन तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आएंगे, ये मेरा मन कहता है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर स्नेहा ने एक लंबी सांस ली। ये सब सुनकर अंकित को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस औरत को माँ जिंदगी भर गालियाँ देती रही, आज वही औरत उनके मुश्किल वक्त में काम आई। यही सब सोचते हुए अंकित घर आ गया। घर पर माँ को उसने सारी बात सुनाई। अंकित की बात सुनकर रश्मि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को वो जिंदगी भर बिना सोचे समझे कोसती रही, उसी औरत ने उसे नई जिंदगी दी। अंकित के साथ जाकर रश्मि ने स्नेहा से क्षमा याचना की। बदले में स्नेहा ने स्नेह से रश्मि को अपने गले लगा लिया। अब सारी दूरियां गलत फहमियां मिट चुकी थी। अब रश्मि और उसके दोनों बेटों को एक चमत्कार होने की आशा थी कि कहीं से उनके पिताजी आ जाएं।
1: बहनों, अभी आपने कहानी सुनी अंजना मददगार। आलेख अर्चना विमल का था और वाचन अनुपमा श्रीवास्तव का था। तो बहनों, जब बातें हो रही हैं रिश्तों की, तो रिश्तों में अब हम बात करते हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की और उनकी शिक्षा की। बहनों, शिक्षा प्रति व्यक्ति मूल अधिकार है, ये हम सभी जानते हैं, और एक विकसित समाज की आधारशिला भी। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए परिवार में हर बेटी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बेटी की शिक्षा में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार ही वह पहला विद्यालय है जहां बच्चे जीवन के मूल संस्कार, मूल्य और सीख प्राप्त करते हैं। माता पिता यदि परिवार का महत्व समझते हैं और बेटी को समान अवसर प्रदान करते हैं, तो वह आत्मविश्वास के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर सकती है। परिवार का प्रोत्साहन, स्नेह और विश्वास बेटी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं, उसकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, तब उसकी सीखने की रुचि और भी बढ़ जाती है। परिवार की जिम्मेदारी केवल बेटी को विद्यालय भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय समय पर उसे प्रेरित करना आवश्यक

शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना, समय समय पर शिक्षकों से संवाद करना और उसकी प्रगति पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। तो बहनों, बेटा और बेटी के बीच समान अवसर, सम्मान बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। परिवार बेटी को अनुशासन, सम्मान और सही निर्णय लेने की क्षमता सिखाता है। इस प्रकार प्रत्येक बेटी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकती है। सरकार द्वारा भी बेटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास हो रहे हैं और बेटियाँ पढ़ भी रही हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रही हैं। इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब परिवार अपनी जिम्मेदारी समझकर बेटी को शिक्षित करे, सहयोग करे, विश्वास के साथ उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखे। प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है कि अपनी बेटी को उसके सपनों को साकार करने में हर संभव सहयोग करें। यही एक समृद्ध, समान और प्रगतिशील समाज की पहचान है।

बहनों, कुछ स्वाद किसी के साथ के भी होते हैं। सिर्फ चाय में चीनी डालने से ही जिंदगी मीठी नहीं होती, तो बहुत संभल कर चलिए संबंधों की बारिश में, क्योंकि इनका रेनकोट बाजारों में नहीं मिलता। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं वनिता लोक। आज कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीप्ति शर्मा ने। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के गाए सूरज और चंदा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं। इस समय 2 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले अंग्रेजी में और उसके बाद हिंदी में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामानंद भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार

संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।

0: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का

0: ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
0: अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
1: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
1: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
1: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
1: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं।

0: तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं?

0: जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई,

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए।

0: उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो। अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि

0: क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।

0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
1: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
2: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
3: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
2: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
3: कैसे चित्र?
2: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
2: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए
2: आइए।
1: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
3: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
1: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
3: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
1: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
2: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
2: हाँ।
1: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
3: सच?
1: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी व दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा अधिक रहता है, तो शरीर की सुरक्षा, बारिश से बचाओ और बारिश का आनंद भी, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों युववाणी कार्यक्रम में हर रोज हम आपके लिए कुछ न कुछ विशेष जानकारी

और कुछ विशेष बातें लेकर आते हैं। तो हर रोज की भांति आज भी हम कुछ बातें करेंगे, आपसे साझा करेंगे। आज की बात के क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को कैसे सुधारें। दोस्तों, विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला है। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो समाज के प्रत्येक बच्चे तक समान रूप से पहुंचे। आज देश में नई तकनीकी, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड, पुस्तकालय, छात्रवृत्तियां और विभिन्न शैक्षिक योजनाएं शिक्षा को अधिक सुलभ बना रही हैं, लेकिन अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समाज में विद्यालय अभिभावक और विद्यार्थियों सभी की साझा जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यदि हम प्रत्येक बच्चे को सीखने का समान अवसर दें तो वही आगे चलकर एक सशक्त, जागरूक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में। कैसे बचें साइबर सुरक्षा को लेकर के और ऑनलाइन धोखाधड़ी, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डिजिटल युग ने हमारी दुनिया को आसान तो बनाया है लेकिन इसके साथ साइबर अपराधों का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। आज ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, नकली वेबसाइट, ओटीपी और बैंक विवरण मांगने वाले संदेश आम हो गए हैं। थोड़ी सी लापरवाही आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह का नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कुछ सरल सावधानियां हमेशा याद रखें। कभी भी अपना ओटीपी, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सीमित रखें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। यदि किसी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना हो तो तुरंत संबंधित बैंक या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, आज का समय ज्ञान और तकनीकी का है। जितना आवश्यक शिक्षा प्राप्त करना है उतना ही आवश्यक डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना भी है। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होता है। इसी संदेश के साथ आज की बात के साथ हम आपको सुनवाते हैं श्रेय घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में गुरु फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

द्वार खोल दिए हैं। इंटरनेट की संकल्पना ने गागर में सागर को चरितार्थ कर दिया है। ज्ञान विज्ञान साहित्य सूचना मनोरंजन और विविध विषयों पर विस्तृत क्षण मात्र में नजरों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। 80 के दशक से लेकर 90 के दशक के मध्य तक आते आते इस तकनीकी ने सूचना तकनीकी के पटल पर अनेक अभिनव आयामों को स्थापित कर दिया। मानवीय कल्पनाओं की नई ऊंचाइयों पर ले जाता इंटरनेट आज समाज के एक बड़े वर्ग के दैनिक जीवन का अविभाज्य और अनिवार्य अंग बन गया है। इंटरनेट का प्रयोग विश्व के बहुत से लोगों के जीवन का अपरिहार्य भाग बन चुका है। इस प्रकार से विश्व के लगभग एक तिहाई लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। हालिया वर्ष में सामाजिक संचार माध्यम वेब की दूसरी पीढ़ी के रूप में संपर्क प्रचार विज्ञापन और व्यापारिक लक्ष्यों के साथ वर्चुअल हो गए हैं। इन संचार माध्यमों का प्रयोग करने वाले इसके द्वारा उपलब्ध की जाने वाली जानकारियों को केवल पढ़ने वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वयं वे जानकारी के एक भाग को तैयार करके इन संचार माध्यमों के हवाले करते हैं। जबकि वेब की पहली पीढ़ी में समाचार पत्र किताब टेलीविजन और रेडियो जैसी संचार माध्यमों संबोधक से परस्पर संपर्क स्थापित करने की संभावना नहीं होती थी। सामाजिक साइटों का प्रयोग करने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि इन साइटों के महत्व व आकर्षण का सूचक है। वर्तमान समय में फेसबुक और ट्विटर जैसी साइटें इसी साइटों में परिवर्तित हो गई हैं, जिनका लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं। सामाजिक साइटों ने भौगोलिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आस्थाओं की सीमा को समाप्त करके लोगों को एक दूसरे के पास बिठा दिया है। ये साइटें उस स्थान में परिवर्तित हो गई हैं जहां लोग एक दूसरे के विचारों एवं दृष्टिकोणों से परिचित हो सकते हैं। इन साइटों का प्रयोग करने वाले सांस्कृतिक शिक्षा आयु भाषा आदि की दृष्टि से विभिन्न स्तर के होते हैं और वे अपनी रुचि एवं आवश्यकता के आधार पर इन साइटों से जानकारी लेते हैं या उनका उत्पाद व प्रचार करते हैं। सामाजिक साइटों ने सूचना पहुंचाने के क्षेत्र को भी परिवर्तित कर दिया है। सामाजिक साइटों ने लिखित व पारंपरिक संचार माध्यमों की ओर लोगों की रुचि को बहुत कम कर दिया है, क्योंकि 21वीं सदी के लोग पल पल का समाचार जानना चाहते हैं और जो साप्ताहिक पत्रिका यहाँ तक कि जो समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उसमें भी प्रकाशित खबरें पुरानी हो चुकी होती हैं, क्योंकि इन समाचारों के प्रकाशन से पूर्व हजारों लोग इससे अवगत हो चुके होते हैं। सामाजिक साइटों प्राकृतिक और सामाजिक संकटों में प्रभावी भूमिका निभाती हैं और इससे संबंधित घटनाओं व पहलुओं को कवरेज देने में पारंपरिक संचार माध्यमों से बेहतर कार्य करती है। उदाहरण स्वरूप बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले इससे संबंधित तस्वीरों फिल्मों और आवाजों आदि को यथाशीघ्र भेजते हैं और दूसरी ओर सहायता भेजने एवं लोगों से आवश्यक वस्तुओं के लिए अपील करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। सामाजिक साइटों ने विश्व के लोगों की जीवन शैली को भी परिवर्तित कर दिया है। यद्यपि भौगोलिक सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यह परिवर्तन अलग अलग है, यानी कहीं कम तो कहीं अधिक, परंतु यह परिवर्तन अपरिहार्य है। इन साइटों ने समाज के लोगों के साहित्य रीति रिवाज और महिला एवं पुरुषों के मध्य संबंधों को भी परिवर्तित कर दिया है। दूसरी ओर इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार व क्रय विक्रय भी होता है, जिससे सामाजिक साइटों को आसारण प्राप्त हो गया है। कंपनियां, छोटे संगठन और छोटे व्यापारी सामाजिक साइटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन देन करते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट की विशेष साइटों के प्रयोग करने वालों को भविष्य में एक ग्राहक के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक साइटों पर प्रभाव डालने वाले लोग वर्तमान समय में अपनी विरोधी सरकार को प्रभावी करने के लिए इन साइटों का प्रयोग करते हैं। मध्य पूर्व अफ्रीका में घटने वाली घटनाएं एवं राजनीतिक परिवर्तनों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सामाजिक साइटों के प्रयोग का एक गलत प्रभाव समाज के सार्वजनिक अज्ञानता उत्पन्न करना है। ये साइटें बड़ी सरलता से एक समाज के लोगों की दृष्टि को सही मार्ग से हटा देती है और अपनी विशेष शैलियों का प्रयोग करके साधारण लोगों को बुद्धि से काम लेने के बजाय भावुक बना देती है। इन साइटों के जो सकारात्मक लाभ हैं, उसके साथ ही इन साइटों के प्रयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसे इन साइटों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के मध्य आमने सामने एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया है। इन साइटों का प्रयोग करने वाले बहुत कम अपने मित्रों एवं निकट संबंधियों से मिलने के लिए जाते हैं और इस कार्य के स्थान पर वे ऑनलाइन उन्हें देख लेते हैं या उनके लिए ईमेल या कमेंट भेजकर उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। इन साइटों का प्रयोग करने वाले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से कम बात करते हैं। इन साइटों के प्रयोग से एक प्रकार का नशा होने लगता है। इन साइटों का प्रयोग करने वालों पर भिन्न मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। अवसाद, शर्मिला हो जाना, अलग थलग

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं विज्ञान वार्ता, इंटरनेट का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष। वार्ताकार हैं निखिल चौधरी।
5: दोस्तों, इंटरनेट या विश्व अंतरजाल विज्ञान की ऐसी उपलब्धि है जिसने सूचना तकनीकी के क्षेत्र में असीमित संभावनाओं के

अलग हो जाना, समाज से दूरी और आत्मविश्वास कम होने जैसी मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। सामाजिक साइटों के अधिक प्रयोग से इंटरनेट पर लोग एक दूसरे से परिचित होते और विवाह करते हैं, तलाक होते हैं, परिवार टूटते हैं व बिखरते हैं, बच्चे समय से पहले बालिग हो जाते हैं और यह वह चीजें हैं जिससे अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विश्व के विभिन्न देशों में ध्यान योग वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध व अध्ययनकर्ता का मानना है कि इंटरनेट साइटों के माध्यम से स्थापित किए गए संबंध कृत्रिम हैं। परिणाम स्वरूप यह संबंध समय बीतने के साथ धीरे धीरे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। इन साइटों का प्रयोग करने वाले यह सोचते हैं कि एक बड़े समाज में लाखों लोग उनके संपर्क में हैं, जबकि वास्तव में वह अपने कंप्यूटर के पास अकेला बैठा है। अमेरिका के MIT के एक शोधकर्ता सेरी टर्केल कहते हैं कि फेसबुक लोगों की पहचान को खराब कर रही है, क्योंकि जो एक व्यक्ति की सेंड रिक्वेस्ट होती है संभव है कि वह सही ना हो। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग प्रतिदिन विशेषकर सोने से पहले सामाजिक साइटों का प्रयोग करते हैं वे गंभीर रूप से अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त हैं। सामाजिक साइटें कभी बंद नहीं होती हैं और उसमें सूरज नहीं डूबता है, इसलिए इनका प्रयोग करने वाले रातों को देर तक जागते हैं और दिन में जिस तरह लाभ उठाना चाहिए उससे वे कम ही लाभ उठा पाते हैं। इंटरनेट का प्रयोग मुख्यतः संचार के लिए, जानकारी एकत्रित करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन, वर्तमान विषय वस्तु, ऑनलाइन सीखना, वाणिज्य प्रकाशन आदि के लिए किया जाता है। इंटरनेट के उपयोग में प्रकाशन केवल संगठन या व्यवसायों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि कोई भी स्वयं की वेबसाइट बना सकता है एवं विश्व भर में अपनी जानकारी वर्ल्ड वाइड प्रकाशित कर सकता है। यह संगठन नेटवर्क का एक वैश्विक संग्रह है जो इंटरनेट के कॉम थ्रू के माध्यम से डेटा के आदान प्रदान में मदद करता है। विश्व भर में हजारों लोग अपने घरों, पाठशालाओं, इंटरनेट कैफेज एवं कार्यस्थल पर जानकारी का उपयोग करने में सक्षम है। छात्रों एवं बच्चों के संचार एवं सहयोग के कौशल विकास के लिए इंटरनेट एक उत्कृष्ट उपकरण है। इस सबसे ऊपर इंटरनेट भाषा कौशल निर्माण का एक प्रभावी साधन है। ईमेल चर्चा समूह एवं चैट रूम्स के माध्यम से छात्र लिखित रूप से संचार के आधारभूत सिद्धांत सीखते हैं। इनसे शिक्षकों को सामान्य साक्षरता कार्यक्रम में इंटरनेट आधारित गतिविधियों को समावृष्ट करने एवं उसकी शिक्षा रणनीति की गतिविधियां लाने में अवसर देते हैं। आज इंटरनेट के संचार के परिदृश्य में व्यक्तिगत डाटा मूल्यवान है एवं उसकी सुरक्षा करना एक कौशल है और जिसे समझने की हमें आवश्यकता है। इंटरनेट के जन्म से आज तक इसके स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। गोपनीय सरकारी दस्तावेजों से लेकर आम लोगों की चैट रिकॉर्ड और ईमेल्स सभी कुछ इंटरनेट के वर्चुअल तर्कों पर रखा हुआ है। सोचिए, इसका मालिकाना हक अगर किसी देश या किसी व्यक्ति के पास हो तो वह देश कितना मालामाल हो जाता है। लेकिन सच है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। इंटरनेट की उत्पत्ति और उसमें रोजाना होने वाले इनोवेशन के लिए सरकारों से लेकर निजी क्षेत्र, इंजीनियर, सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा और भी कई क्षेत्रों का सहयोग है। परिस्थिति तब चिंताजनक हो जाती है जब इंटरनेट पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण रखने की बात की जाए। इंटरनेट गवर्नेंस पर पिछले 2 दशकों से बहस हो रही है और इसे नियंत्रण किए जाने और न किए जाने के पक्ष में लगातार चर्चा हो रही है। इंटरनेट डोमेन यानी वेबसाइट पता जारी करने वाली संस्थान ICANN, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स जैसी इंटरनेट की मूलभूत कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं, जिस वजह से ये माना जाता है कि इंटरनेट पर अमेरिका का दबदबा है। लेकिन इंटरनेट पर एकाधिकार की स्थिति से बचने के लिए इसे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ देश चाहते हैं कि इंटरनेट गवर्नेंस की ऐसी व्यवस्था बने जिसमें इंटरनेट सरकारों के नियंत्रण में रहे। ऐसी मांग के पीछे एक अहम कारण ये भी है कि देशों को साइबर की चिंता भी है और सुरक्षा के क्षेत्र में इसके दुरुपयोग का डर भी। यही कारण है कि देश मन ही मन इसके नियंत्रण पर हक पाना चाहता है। भारत में भी इस बारे में व्यापक तौर पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में इंटरनेट और टेलीकॉम की जुड़ी संस्थानों ने मिलकर एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी वर्ग और सिविल सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अध्ययन, व्यापार, वकालत, तकनीकी और सामाजिक कार्य से जुड़े लोग शामिल हुए। इंटरनेट गवर्नेंस से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के विशेष समूह MAG, मल्टी स्टेकहोल्डर एडवाइजरी ग्रुप की सदस्य सुबी चतुर्वेदी कहती हैं, इंटरनेट सरकार के प्रारूप से बाहर की उपलब्धि है। अभिव्यक्ति की आजादी, सर्वलौकिकता, इनोवेशन
ये सभी इसके मूल सिद्धांत।

0: ऐसे में विचार इस बात पर करना है, क्या यूएन के तहत ऐसा कोई मॉडल बन सकता है जिसमें समाज, सरकार और निजी क्षेत्र समेत सभी को बराबर का अधिकार मिले। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बैठक में भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा था कि इंटरनेट का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन बहुपक्षीय, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें सरकार और दूसरे सहयोगियों की पूरी भागीदारी हो। यद्यपि ज्ञान विज्ञान की प्रगति से मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत सी सुविधाएं व संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, परंतु उनके गलत प्रयोग से विनाशकारी और अपूर्ण क्षति का सामना करना पड़ सकता है। वास्तविकता यह है कि इंटरनेट व सामाजिक साइटें दोधारी तलवार की भांति कार्य करती हैं। इस आधार पर हमें इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि हम सामाजिक साइटों में व्यस्त हो जाएं और जहां चाहें जाएं, बल्कि हमें उनसे सही लाभ उठाने को सीखना चाहिए और इन साइटों का प्रयोग अपनी और निकटवर्ती लोगों की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए करना चाहिए। इंटरनेट का मानव जीवन में कई विभिन्न पहलुओं में कोई अलग अलग प्रभाव पड़ा है। हालांकि हम इंटरनेट के आविष्कार के कुछ नकारात्मक प्रभाव से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हम इससे भी सहमत हैं कि इंटरनेट सभ्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इंटरनेट एक चाकू की तरह है। आप एक चाकू के साथ एक आदमी को मारने के लिए या यह फल काटने और उसे खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह केवल एक साधन है और अच्छा या बुरा प्रयोजनों के इस्तेमाल पर निर्भर करता है।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे इंटरनेट का सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष के बारे में ये विज्ञान वार्ता। वार्ताकार थे निखिल चौधरी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। सुनील चौहान की आवाज में फरेब फिल्म का गीत है, शहीद कतरी की रचना, अनुमलिक का संगीत।

सुनिधि चौहान की आवाज़ में फरे फिल्म का गीत आपने सुना। सईद कदरी की रचना थी, अनु मलिक का संगीत निर्देशन था और इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये वाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक

0: की। श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभ, कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से बेहतर खेती। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा गौ संवर्धन में किसानों की भूमिका। इसमें गौ आश्रय प्रबंधक विभोर से बातचीत करेंगे दीपक गोस्वामी। साथ ही आप आनंद ले सकेंगे कुछ ब्रज लोक गीतों का। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा संध्या 6:45। संध्या 7:05 पर सुनिएगा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम, जिसमें ब्रज काव्य सुजाता के क्रम में हम आपको सुनवाएंगे ब्रज भाषा काव्य पाठ। कवि होंगे भोजराज सिंह भोज। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकेंगे संध्या 7:31 से। रात्रि 8 बजे आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। रात्रि 8:20 पर देश गान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। तबले पर संगति पंडित विनोद लेले करेंगे। राग होगा माल गुंजी।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:10 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशगान का। आइए सुनते हैं गोपाल रंजन सिन्हा की ये देशभक्ति परक रचना संवेद स्वरों में।

समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे गोपाल रंजन सिन्हा की ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप यादव।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने बारे सब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, मौसम ने करवट ले ही है और ये करवट के संग ही चारों ओर को झिमझिम झिमझिम बरसात है वे लगी है। और सांची कहूँ तो आधो अधूरो मैं हूँ, भीगो हुए हूँ, चूँकि आप सबसे बात करनी, खेती बाड़ी पर चर्चा करनी, तो बरसात में तो देखो मोटरसाइकिल पर सभी भीग जाएँ। या भीगे भीगे मौसम में बात करें हम जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लाभन की, तो किसान भैया देखो, आपको रासायनिक खादन की अब समस्या है वे लगी है। एक जमानो हतो कि जब कृषि विभाग के लोग किसानन के खेतन पे पहले टीनन में यूरिया आओ करो कनस्तर में, तो यूरिया के कनस्तरन को खेतन पे डाल जाओ, बोलो भैया यहाँ डाल के देखो और बड़ी अच्छी खेती होगी, बड़ी अच्छी फसल होगी। ये वो दौर हो जब चार मन को पाँच मन को बीगो गेहूँ की फसल हो करेगी, यानी कि हमारे घरन में बेझड़ खाई जाए गेहूँ जौ चना, ये सब मिली जुली जो अनाज हैं इनकी बेझड़ हम लोग खाओ करें। गेहूँ की उपज बहुत कम हुई, लेकिन जैसे जैसे हमने रासायनिक खादन को प्रयोग शुरू कियो तो उत्पादन बढ़वे लगो और आज स्थिति ये है कि किसान भैया के चाहे धान हो या गेहूँ 30 से 40 मन तक की पैदावार होने लगी है। लेकिन किसान भैया, हमने रासायनिक खाद तो अपनाए लेकिन जैविक खादन को या कार्बनिक तत्वों वाले जो खाद हैं, प्राकृतिक तत्वों वाले जो खाद हैं।

उनको छोड़ दियो। चूँकि अब घर में देखो बहू बेटी गाय भैंस पालवे से थोड़ी परहेज करें, गोबर करवे से परहेज करें। जब गोबर नहीं होगा तो खाद कहाँ से बनेगी, जैविक खाद कहाँ से आएगी, प्राकृतिक खेती कैसे होगी। तो अब ये प्राकृतिक जो तत्व हैं इनकी कमी के चलते हमारी जो उपज है खेती की वो स्थिर रह गई है। वैज्ञानिक चिंतित हैं कि यह उपज को कैसे बढ़ाया जाए, और ये उपज तभी बढ़ सके है जब हम अपनी खेती में प्राकृतिक और जैविक तत्वों को समावेश करें। तो देखो प्राकृतिक तत्वों में हम बात करें तो गोबर की खाद है, ढेंचा की हरी खाद है, सनई की खाद है, दलहनी फसलन को हम करें बाकी बाद में उनको खेत में जोत दें वासे भी हमें खाद हमारी फसल को मिले है। तो जैविक और प्राकृतिक खेती को हमें थोड़ा सो अपनाना पड़ेगा, इन तत्वों को अपनी फसल में खेती में डालना पड़ेगा, मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तभी रासायनिक खादन को अवशोषण हमारी फसल ठीक सो कर पाएगी। तो फ़ायदा की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ के फ़ायदा ये है कि हमारा जो भी उत्पाद आवे आज धनिया में वो खुशबू ना है जो पहले ज़माने में हो ही कर रही, क्योंकि हम देखे हैं कि बात समय पर ना तो दाल में टमाटर को तड़का लगे हो ना लहसुन को तड़का लगे हो, सामान्य सी दाल बड़ी स्वादिष्ट लगो करी। आज हम लहसुन प्याज धनियों सब चीज़न को तड़का लगा रहे हैं, वाकई बाद भी वो स्वाद वो सुगंध वो पोषण हमारे जो खाद्यान्न है चाहे दाल हो या और कोई अन्न हो वामे ना है। तो हमको अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना है, स्वाद अच्छा रखना है, पोषण युक्त तो फसल लेनी है, तो प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। और या कि शुरुआत हम बड़े स्तर पर ना करके कम से कम अपने घर के काजे, अपने बाली बच्चिन के काजे, अपने परिवारिन के काजे, अपने रिश्तेदार नातेदार या ऐसे लोग जो जैविक या प्राकृतिक तत्वों की मांग करे हैं उनके काजे उगाए के शुरुआत कर सके हैं। जो कि अभी बाजार की समस्या है, प्राकृतिक या जैविक खेती आपने करी और बाजार में लेके गई तो आड़त या तो एक ही भाव पूछेगा, भैया ये तो गेहूँ 2500 रुपया कुंटल है या ते ऊपर ना है, सब रे गेहूँ 2500 बेच रहे हैं तो तुम्हारो हम 3000 कैसे ले लें। तो प्राकृतिक और जैविक तत्वन की जो खेती है बाकी शुरुआत अपने उपयोग और उपभोग के स्तर से शुरू करें, और जो लोग अच्छो खाना चाहें स्वस्थ रहना चाहें उनके काजे करें। तो ये रही चर्चा हमारी प्राकृतिक और जैविक खेती पर। अब बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से बेहतर खेती पर। तो किसान भैया देखो सरकारी आंकड़े गवाह हैं बात के कि हमारे जो किसान भैया हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र या वैज्ञानिकन की सलाह को कम माने, दुकानदार जो जैसे खाद बीज दवा ये सब लावे बाकी सलाह को ज़्यादा माने, 80% से ज़्यादा किसान भैया बाकी सलाह को ही माने। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्रन पे जो वैज्ञानिक है भैया देखो उन्हें सरकार एक एक दो दो लाख रुपये तनख्वाह दे और वो यही पढ़ाई को पढ़ के 10-15 साल खेती बाड़ी की सब पढ़ाई को पढ़ के ही आमे हैं। तो आपके आसपास जहाँ भी हम देखें किसान भैया काम में किसान गोष्ठी है रही है, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक वामें चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे किसान भैया दूसरे ही रंग में रंगे हुए हैं, बहुत कहूँ ताश के फड़ जम रहे हैं तो कहूँ अपने ठट्टा कर रहे हैं। तो ठट्टा करो अच्छी बात है, एंजॉय करो, लेकिन अगर वैज्ञानिक आपके पास आ रहे हैं तो आपको उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए और अपनी समस्या उनको बतानी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो मथुरा की मैं बात करूं तो देखो मथुरा में यहाँ वेटनरी विश्वविद्यालय है कचहरी से निकाल के, वहाँ में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ में मिट्टी के वैज्ञानिक अलग हैं, पानी के वैज्ञानिक अलग हैं, सब्जी वाली फसलों के वैज्ञानिक अलग हैं, बाकी अन्न जो हम उपजा में हैं चाहे धान है गेहूँ है बाकी वैज्ञानिक अलग हैं। तो आपको कौन सी किस्म लगानी है, कौन सी किस्म में कौन कौन से रोग प्रतिरोधी है, कौन सी कम पानी में होगी, कौन सी ज़्यादा पानी में होगी, आप अपनी ज़मीन के हिसाब से और अपने संसाधन के हिसाब से अपनी प्रजाति को चयन कर सको। और जब प्रजाति आपने मान के चलो आपको पूंठ पे खेत है तो पूंठ पे अगर आप खेती करोगे तो वहाँ पूंठ पे पानी की कमी निश्चित रूप से रहेगी, तो वहाँ अगर कम पानी वाली फसल लगाओगे तो आपको परेशानी कम होगी और उत्पादन ठीक ठाक मिलेगा। और आपने ऐसी जगह पर लगा दी जहाँ पानी की भरमार रहे और पानी की भरमार वाले इलाके में आपने कोई ऐसी फसल लगा देगी जहाँ पानी कम चाहिए तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब नफा नुकसान देखने के काज हैं, आपको कृषि वैज्ञानिकन से सलाह लेनी चाहिए। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पूरी जून निकल गई, किसान भैया की धान की फसल बहुत से इलाके में हम देख रहे हैं पजर गई सूख गई। तो मौसम कब बरसेगा, कब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कब ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं और इनके बिगड़बे के अनुरूप ही हमें अपनी खेती को बचाना है और अपनी जो माली हालत है वह को भी स्थिर रखना है। तो या के काजे वैज्ञानिकन की सलाह बेहद ज़रूरी है। हालांकि जो

तकनीकी युग है और तकनीकी युग में अब एंड्रॉयड फ़ोन सब किसान भैया इनके बाली बच्चन के पास है, तो अब बहुत सी चीज़ इनको तो किसान भैया अपना भी लगे हैं, देख भी लगे हैं। वैरायटी इनको मोबाइल में गूगल में सर्च करके देख लें कौन सी वैरायटी लगा में। मौसम की बात करें तो मौसम को अलर्ट किसान भैया इनके मोबाइल पर अब आवे लगा कि बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। तो AI और तकनीकी किसान भैया इनकी खेती में जैसे सहयोगी है रही है, वैसे ही हमारे ये जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं वो आपकी खेती में और ज़्यादा सहायक बन सकें। ज़रूरत यह बात की है कि आप उनके पास जाएं, अपनी मिट्टी की जांच कराएं, अपने पानी की जांच कराएं और बाकी संघ ही उनसे जो ज़रूरी जानकारी है, ज्ञान है, वाको ज्ञानार्जन करें और ज्ञानार्जन के अनुरूप अपनी भविष्य की जो रूपरेखा है वाको तैयार करें। तो किसान भैया ये हमारी है गई दो चर्चा, मौसम बरसात को है तो आपको सुनवा में एक प्यारो सो लोकगीत, चाहे गायो है माधुरी शर्मा ने बिजुरिया चमक रही।

0: तो किसान भैयाओ, जल भरे नवेली नार बिजुरिया चमक रही माधुरी शर्मा के स्वर में आप सब ने लियो या लोकगीत को आनंद। और अब सुनवा रहे हैं आपको एक भेंट वार्ता, विषय है गौ संवर्धन से किसानों की भूमिका। वार्ताकार हैं बेभोर गौ आश्रय प्रबंधक और इनसे बातचीत करी है दीपक गोस्वामी ने। सुने ये भेंट वार्ता।
1: गौ माता एक हमारे जीवन का आधार है और खासकर ब्रज क्षेत्र में अगर हम बात करें गौ माता की, तो जहां सारे विश्व में गौ माता का अलग महत्व है और हमारे ब्रज में गौ का अलग महत्व है। गौ को यहां हर जगह से ग्रास निकलता है और पहली रोटी गाय की निकलती है। गौशालाओं का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम आए हैं गौधाम यानी उमा कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा गौशा आश्रय स्थल बिहार बन राल मथुरा में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस गौशाला के प्रबंधक विभोर जी। विभोर जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि मथुरा जनपद में आपकी ये गौशाला जो कार्य कर रही है राल में, ये हमारे मथुरा जनपद के किसानों के हित में कौन सी ऐसी सकारात्मक गतिविधियों पर कार्य कर रही है जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं?
2: नमस्कार सभी को। राल में स्थित ये 136 एकड़ में फैली हुई जो विशाल गौशाला है, लगभग 9000 गोवंश के लिए आश्रय स्थल है। जितनी भी किसानों के द्वारा या रोड पे जो गौ माता छोड़ दी जाती है, निराश्रित गौ माता छोड़ दी जाती है, जो सड़कों पे एक्सीडेंट का कारण बनती है और या ले जाकर उनको बूचड़ खानों में बेच दिया जाता है, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाती है। हम लोगों के माध्यम से, कैटल कैचर के माध्यम से, इस तरह से गोवंश को रोड से उठाकर, निराश्रित जगहों से हटाकर उनको यहाँ आश्रय दिया जाता है। और किसानों के लिए जो गाय हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसको फिर से हुष्ट पुष्ट करके उनको सहभागिता योजना के माध्यम से फिर वो किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार की योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।
1: सहभागिता मतलब दो पक्षों की सहभागिता, एक पक्ष गौशाला और दूसरा पक्ष हो गया किसान।
2: किसान
1: तो कैसी है ये सहभागिता, किस रूप में लोग इसका लाभ ले सकते हैं, इसका बेसिक जो कंसेप्ट है यानी इसका जो मूल आधार है वो क्या है?
2: सरकार द्वारा ये जो सहभागिता योजना चलाई जा रही है और जो हमारा उमा कल्याण ट्रस्ट का भी जो मुख्य उद्देश्य है कि जो गाय का घर है वो किसान का घर है, जो गौशालाएं हैं एक तरह से जो बिल्कुल निराश्रित गोवंश है, वृद्ध और कमजोर गोवंश है, उनके लिए आश्रय स्थल है। जिस तरीके से किसान गायों की सेवा कर सकता है, रक्षा कर सकता है, वो गौशालाएं नहीं कर सकती हैं। तो सरकार किसान को अगर वो गौशालाओं से बिन दुधारू गाय को लेते हैं तो 1500

0: रुपया पर मंथ के हिसाब से एक सहयोग राशि देती है। ऐसे हर किसान 4 गाय गौशाला से ले सकता है और वो अगर उसका अच्छे से भरण पोषण करता है तो उनको मासिक 1500 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। इस तरह से ये क्या होता है कि जैसे रोड से जो गोवन छोड़ दिया जाता है, जो कमजोर है, जो अभी उसको अच्छा आहार नहीं मिला, गौशालाओं में उसको पोषित करके पुनः किसानों के लायक बनाकर वो किसानों को दें और किसानों द्वारा ही पोषित होकर रक्षित होकर उनका संवर्धन हो, ये सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य है।
1: चलिए, ये आपने एक उद्देश्य बताया। अब हम बात करते हैं, जैसे एक कोई साधारण किसान है और वो इस योजना में रुचि लेता है, उसे मन में भाव आया कि मैं गौ माता की सेवा करूं और अपने खेत में ला करके गौ माता की सेवा करके अपनी खेती को भी बढ़ाऊं और अपने घर में समृद्धि लाऊं, वो कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी?
0: जैसा कि मैंने बताया, सहभागिता योजना है, वो किसी भी अपने जो डिस्ट्रिक्ट की, अपने जो ब्लॉक की सरकारी गौशाला से संपर्क कर सकता है और वहां पशु चिकित्सा अधिकारी का भी सहयोग ले सकता है। गौशालाओं में इसके लिए फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म का भरना होता है, उसके बाद जो ग्राम प्रधान और सभी लोगों के उसमें जो सिग्नेचर होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद, उनको एक दिन निश्चित कर दिया जाता है कि इस दिन जो है वो गोवंश ले जा सकते हैं। माना अभी 30-40 फॉर्म अगर हो गए हैं तो उनको उस एक पर्टिकुलर डेट में बुलाया जाता है और उस डेट में वो अपना गोवंश को चयनित करके फिर वो यहां से लेके जाते हैं। उसकी पूरी सरकारी प्रक्रिया, उसका पूरा जो क्या उसकी कागजी कार्रवाई होगी, वो सब हमारे द्वारा गौशाला से करवाया जाता है, उसके लिए पूरा सहयोग दिया जाता है।
1: अब प्रश्न आता है कि मान लो कोई किसान लेके चला गया और आपने बताया जैसे कि एक गौ माता के लिए 1500 रुपए की सहयोग राशि सरकार से मिलेगी। अब यहां दूसरा प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि गौ माता एक किसान के लिए उपयोगी कैसे हो सकती है, वो उसके लिए उत्पादक इकाई के तौर पर कैसे कार्य कर सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि किसान भाई की रुचि तभी इसमें उत्पन्न हो सकती है क्योंकि दूध का तो प्रश्न है नहीं, दुधारू गाय है नहीं, तो ऐसे गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से हम खाद या जो हमारा गौझरण अर्क है या जो और अन्य वस्तुएं हैं, हम कैसे हमारे किसान भाई उसका कार्य कर सकते हैं, उस विषय में हम जानना चाहें।
0: हमारी गौशाला की जो टीम के कुछ ऐसे लोग जो कि जैविक खेती में प्रशिक्षित है, वो गांव-गांव जाके, घर-घर जाके किसानों से संपर्क करते हैं, किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। ना केवल प्रेरित करते हैं, उनको 3 दिन का 5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं, उनको किसी भी प्रकार का सहयोग, जैसे अगर गोबर इत्यादि में सहयोग चाहिए, गो कृपा अमृत है, जैविक खाती खाद बनाने की प्रक्रिया क्या है, और जैविक खाद हम गौशाला में भी बनाकर उनको देते हैं। इसके अलावा जो गो उत्पाद है, गो उत्पाद का प्रशिक्षण, कैसे किस प्रकार गो उत्पाद बनाए जा सकते हैं, गो उत्पादों से कैसे दीपक से, धूप बत्ती से और अन्य गो उत्पादों से बनाकर वो कैसे अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, उसका भी हमारी गौशाला द्वारा पूरा प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ गो उत्पाद केंद्र में वो यहाँ आकर स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें भी जो है वो ट्रेनिंग लेती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं, और किसान भाई भी आकर यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और हमारी टीम भी गांव-गांव जाकर ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि उनको जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको खाद उपलब्ध कराई जा सके, उनको खाद बनाने का तरीका उपलब्ध किया जा सके, ताकि वो दूध जो है एक तरह से एक साइड प्रोडक्ट है, गोबर और जो गोमूत्र है वो हमेशा गौमाता देती है, यदि वो उसका सही उपयोग करना शुरू कर देंगे, उसको आमदनी का जो वो बनाएंगे, जरिया बनाएंगे, तो उसके माध्यम से गौमाता हमेशा उनको देगी ही देगी।
1: आज वह समय आ गया है, बदलाव आ चुका है। आज मकान की ईंट से लेकर मकान के पेंट तक, सीमेंट से लेकर और जो है सजावटी सामान तक, हर जगह गौ माता के गोबर का इस्तेमाल हो रहा है। और आज वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध भी किया है कि अगर कहीं हमने गोबर का पेंट लगा दिया और उस कमरे में सामान्य तापमान के सापेक्ष में तापमान कम रहता है, वहां कीड़े मकोड़े कम आते हैं, वहां शुद्धता ज्यादा रहती है और वहां रहने वाले व्यक्ति की प्राणवायु भी अच्छी रहती है। तो कहने का मतलब यह है, इसको अध्यात्म के साथ, स्वास्थ्य के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का ये एक अवसर है और इस अवसर में आपकी गौशाला के द्वारा लोगों के जन कल्याण के लिए क्या गतिविधि चलाई जा रही है?
0: जैसा कि मैंने बताया कि किसानों के लिए उनको

गाय उपलब्ध करवाना, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, गो उत्पाद केंद्र के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उनको जानकारी देना, जागरूकता करना, हमारे प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर कैसे जैविक खेती के, कैसे गोबर की खाद की ईंटों के उपयोग है उसको किस प्रकार से, जैसे दंत मंजन है आज हम लोग केमिकल युक्त जो दंत मंजन का उपयोग करते हैं, हमारे द्वारा जो है बनाए हुए देसी तरीके से गो उत्पादों से बनाए हुए जो फेस पैक हैं, दंत मंजन है, इसके उपयोग से उनको जो जीवन में जो आयुर्वेदिक और वो जो नेचुरल गो आधारित जो है चीजों का उपयोग करने से एक तो सेहत का लाभ होता है, दूसरा वो जो धन उनका जो केमिकल चीजों में वेस्ट होता है उसके ऊपर भी जो है प्रेरणा के कार्य चल रहे हैं। तो हमारे जो कार्य दो तरह के, एक तो

0: प्रेरणा के कार्य चल रहे हैं। तो हमारे जो कार्य दो तरह के, एक तो जागरूकता के कार्यक्रम है जिसमें उनको जागरूक बनाया जाता है, दूसरा प्रशिक्षण है कि ना केवल वो जागरूक रहें और प्रशिक्षण लेके वो स्वयं इसको करें और दूसरों को भी सिखाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे बताया कि प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, गोबर उपलब्ध करवाया जाता है, नेपियर खाद जो है हम लोग खुद 100 एकड़ में उसका उत्पादन कर रहे हैं। किसान किस तरीके से नेपियर को उपजाकर उसको गौशालाओं को देकर एक इनकम का, एक अपनी आय का स्रोत बना सकते हैं, उसके लिए भी किसानों को लगातार प्रेरित किया जाता है।
1: आज गाय बोझ नहीं है, आज गाय गौधन के माध्यम से हमारे धन की समृद्धि, हमारे जीवन की समृद्धि की एक इकाई है।
0: कोई ऐसा गोवंश है जो निराशित है, घूम रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए भी अगर आप हमें कैटल कैचर के लिए जानकारी मांगेंगे तो हमारी कैटल कर्ज उपलब्ध करवा के उन गोवंशों को हम लोग अपनी गौशाला में लेके आएंगे। और इसके अलावा जैविक खेती से संबंधित, गो कृपा अमृत से संबंधित, किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी दी जाएगी।
1: आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो किसान भैया, गौ संवर्धन से किसानों की भूमिका, और निश्चित रूप से गौ संवर्धन में किसान भैया की भूमिका महत्वपूर्ण है। और गौ संवर्धन के कार्य सरकार अनेक योजना चला रही है, पशुपालन विभाग ने भी योजना वर्तमान सरकार ने चलाई है, वैसे पहले भी रही है। और गर्मी के समय में देखो, गाय गर्मी के समय में दूध दे और भैंस जो है जाड़े के समय में दूध दे। तो गर्मी जा समय पर दूध की कीमत आसमान छूमे, वह समय पर जो दूध की कीमत तो मिले ही मिले है, और गाय हमारी प्रतिकूल तापमान में हूँ अच्छो दुग्ध उत्पादन दे, तो निश्चित रूप से गौ संवर्धन आवश्यक है। और गौ संवर्धन के माध्यम से ही हम अपनों काम कर सके हैं, और गाय जो है हमारे जो माता के रूप में हमारे यहाँ पूजी जाए, और ये पूजा वैसे ही ना हो, क्योंकि लंबे समय से आदिकाल से गाय की पूजा यहाँ होती रही है। तो किसान भैया, गौ संवर्धन विषय पर आपने जानकारी ली, कैसे आप गाय को रक्षण कर सकें, संरक्षण कर सकें। अब देखो, चूंकि देखो धान की फसल की या समय ट्रांसप्लांटिंग पूरे ज़िले में चल रही है, और धान की फसल हमारे किसान भैया 50-60 हज़ार हेक्टेयर में लगा में, या बार किसान भैया ने धान की सीधी बिजाई भी करी है, पौध भी लगा रहे हैं, यानी कि धान में तरह तरह के प्रयोग किसान भैया ने किए हैं। और मथुरा की मैं बात करूं तो यहाँ 1985, 1692, 1509 ये सब किस्म लगाई हैं। अब मौसम एकदम अनुकूल है, बारिश छिम छिम है वो शुरू है गई है, और अगर आपकी पौध तैयार है तो एक चीज़ या समय ध्यान देवे वाली है कि धान में हमारी जो नर्सरी है वाकू अपने खेत में लगावे से पहले किसान भैया को जड़ शोधन जरूर करना चाहिए, क्योंकि या बार धान की फसल में बकानी जो रोग है, सुर्रा या कहें सुर्रा बहुत आया हुआ है, और ये जो सुर्रा है ये आगे भी अगर पौध में आया हो तो निश्चित रूप से खेत में भी परेशान करे वो। तो यहाँ से बचवे के लिया अगर आपकी पौध एक दो दिन में उखड़नी है तो कार्बन डाइजिम को छिड़काव पौध के ऊपर करें, बाकी अलावा पानी के संग में अपनी जो नर्सरी की क्यारी है वह में कार्बन डाइजिम डाल सकें। और बाऊ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम अपने पौध उखाड़ें तो उखड़ी हुई पौधन की जड़न को कार्बन डाइजिम के घोल में कम से कम आधा घंटा रख के, यानी ज़मीन में एक 6 इंची गहरा गड्ढा कर लें, वहाँ में एक पॉलीथीन बिछा दें और वहाँ में पानी भर के दवाई मिला के पहले पौध को कम से कम आधा घंटा वहाँ में रखें। ऐसे हो गई है कि जो बकानी या फफूंदी जनित जो समस्या पैदा होनी है वो आपकी फसल में कम आएंगी, क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता के चलते आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी आपकी फसल अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, निरोगी होगी। तो किसान भैयाओं, जड़ शोधन पर विशेष ध्यान दें, और जड़ शोधन के अलावा धान में एक चीज़ और गांठ बांध लें कि जैसे ही आपकी फसल में कल्ला बन जाए, कल्ला बनने के बाद में फफूंदी नाशक दवा के छिड़काव को चलन हमारे यहाँ किसान भैया में ना आए। तो बेहद ज़रूरी है, फसल को हमें निरोगी रखना है, चूँकि हमने प्राकृतिक तत्वों को खेती में समावेश बंद कर दिया है, यानी हमें दवान को, केमिकल फर्टिलाइज़र को, इनको प्रयोग पर आधारित खेती लंबे समय से हम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तत्व जब खेत में पर्याप्त मात्रा में होए तो फसल निरोगी रहे, रोगन से

लड़बे की बाकी क्षमता अच्छी रहे। अब चूंकि हम लंबे समय से 20-20 साल है काऊ खेत में गोबर की खाद ना पड़ी, तो ऐसी स्थिति में हम फसल को निरोगी रखना है तो ये सब जो चीज़ हैं, जो वैज्ञानिक सलाह हैं, उनको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जड़ शोधन, क्योंकि बीज में तो आजकल जितनी भी कंपनी है सब ने बीज में दवा मिला के ही देव शुरू किया है, चाहे वो पुड़िया के रूप में रखें। हालांकि बीज पे दवा मिलनी चाहिए, लेकिन पुड़िया अलग से रख के जो किसान भैया ने धान की नर्सरी डाली है, और अब किसान इतने जागरूक भी है गए कि धान को एक तो नया बीज खरीदें और बाकी संग में बाको उपचार भी करें। तो बीज उपचार आपने कर ही लियो है, जड़ उपचार जरूर करें। तो जड़ के उपचार से आपकी जो फसल में शुरुआती दौर में लगने वाली जो बीमारी है, फफूंदी जनित बीमारी है, उनसे आप नियंत्रण पा सको हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है खरपतवार नियंत्रण की। देखो, खरपतवार नियंत्रण धान में बेहद ज़रूरी है। तो आजकल तो बाज़ार में ऐसे ऐसे थोड़े महंगे ज़रूर हैं ऐसे दवा आ गई हैं जिनकी कीमत 1,000 रुपये बीघा तक है, यानी 1,800-1,900 से 2,000 रुपये एकड़ की दवा आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। और इन्हें डालवे थे सबसे ज़्यादा परेशान जो खरपतवार कर रहा है वो है बालदार घास। तो ये जो घास है अलग तरह की घास है, और मथुरा में ऐसे किसान भैया को बहुत परेशानी पैदा हुई है। तो यह घास को मारवे के काजे जो कीमती रसायन है ये ही परफेक्ट है। पुरानी जो दवाई है उनसे समा और तो और कई तरह के खरपतवार, सांठी, ये सब खरपतवार मर जाएं, लेकिन बालदार जो घास है ये घास केवल वही दवाई से मरे है। तो समय से खरपतवार नियंत्रण करवो बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी फसल जल्दी ग्रोथ में आवे और जल्दी से जल्दी कल्ला बने। क्योंकि खरपतवार हमारी मुख्य फसल की जो पोषक आवश्यकता है उनको अवशोषण कर लें, यानी कि धान में आपने जो खाद लगाया हुआ है, जो जिंक आप लगा रहे हैं, वाकू पौधा फसल से ज़्यादा खरपतवार खा ले में। तो आपको अपनी फसल को स्वस्थ रखना हो तो खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे में, और पहले दवा को प्रयोग करें, बाकी बाद में आदमीन की डुलाई, चाहे 2-4 आदमीन की डुलाई से क्या है, जब जड़ हलें धान की फसल की जड़ हलें तो वही हिसाब से तेजी से जड़न में ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीजन को संचार हो, ऑक्सीजन के संचार के संग ही वहाँ में जो कल्ला बनने की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे है। तो किसान भैया, आज के ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में हमने आपको दई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की जानकारी और सुनबाई गौ संवर्धन से लाभ विषय पर एक भेंट वार्ता और सुनबाई प्यारों से लोकगीत। अगले कार्यक्रम में फिर आप सब से होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दिलीप यादव ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और दिलराज कौर के इस दोरों में आलाप फिल्म से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये भक्ति रचना, संगीत निर्देशन जयदेव का था। संध्या वंदन कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फिल्म जोगन से गीता रॉय के स्वर में मीराबाई की ये रचना।

रचना संगीत निर्देशन बुलो सी रानी कथा। आइए अब सुनते हैं सुर संगम फिल्म से एस जानकी के स्वर में वसंत देव की ये भक्ति रचना। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

स्वर्थ एस जानकी का फिल्म थी सुर संगम, रचनाकार थे वसंत देव, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में हम दोनों फिल्म से साहिर की ये भक्ति रचना संगीत जयदेव का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलग अलग से। स्वर हैं आशा भोसले और यशुदास के, रचनाकार हैं आनंद बख्शी और संगीत आरडी बर्मन का है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और यशुदास के युगल स्वरों में अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी की रची ये भक्ति रचना संगीत आरडी बर्मन का था। इसी के साथ संध्या वंदन का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रज काव्य सुधा के क्रम में ब्रजभाषा काव्य पाठ। कवि हैं भोजराज सिंह भोज।
5: आज के जा ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में भैयाओं में अपने विचार आज के जा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप लोगों को सुनाए रहे हूं और मेरी कविता है सवैया छंद में ध्यान चाहूंगा।

भैया जी, ये जल जो है अनाधुंध खींच के जमीन में से और बहाए रहे हैं, बहुत ही हमारा पर्यावरण प्रभावित है। तो जाई संदर्भ में सब छंद सुनो।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजभाषा काव्य पाठ। कवि थे भोजराज सिंह भोज। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

संध्या के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1,200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस

0: चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
1: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
2: अब निवेश यहां भी आ रहा है क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज 3 आरोपियों अनुकल मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर 2 दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
3: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी

0: राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
1: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57 करोड़ 62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम शाम सुहानी।

श्रोताओं, मैं हूं अरविंद कुमार, लेकर उपस्थित हूं श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों में सजी आपकी अपनी पसंद के सदाबहार फिल्मी गीतों की रंग बिरंगी सौगात। बादलों ने ओढ़ ली है नव पर श्यामल चादर, पवन के झोंकों में खुली है मिट्टी की सौंधी से खुशबू, मन की वीणा छेड़ रही है मधुर सुरों का आलाप और हर धड़कन कह रही है आइए संगीत के संग इस शाम को और भी सुहाना बनाते हैं। बारिश की हल्की फुहार हो या मेघों की मध्यम गूंज, ऐसे मौसम में पुराने और नए मधुर गीत मन को एक अलग ही सुकून दे जाते हैं श्रोताओं। तो आइए आपके स्नेहल संदेशों और आपकी मनपसंद फरमाइशों के साथ आरंभ करते हैं सुरों का ये मनभावन सफर। तो देर किस बात की, बढ़ाते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

को सुनने के लिए जो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनमें नाम है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्जुन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, अंशिका और अंकिता जोशी। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद सोनल और सिया जाधव और इनके ढेर सारे साथियों। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, सुमेश और प्रमिला बंछोर। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार गुंजेश, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना जहा। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और इनके परिवारीजन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज। बठिंडा पंजाब से जुड़े हैं परम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर चौड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। ग्राम पजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। नरगोजाड़ छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी देवी, कीर्तनपुरी गोस्वामी, योगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष विवेक, आयुषी। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, जुनैद मुजावर, सबीहा मिखाइल और जैनब मुजावर। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। कल्याण मुंबई से जुड़े हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले। नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। सहारनपुर से जुड़े हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अफसर नासिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब। हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, शोहरत अजहर और अजीन। राजनगर कांति निकेतन से शारदा गुप्ता, कंचन माला मिश्रा, रुद्र गुप्ता, कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, इनके साथ हैं रानी मुकेश गुप्ता, नीलम, रश्मि कुसुम और रूपा इलाहाबादी। नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकुरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकुरे। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, वीना मेघा मस्किन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और रिधान खुराना। वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल और दिव्या, इनके साथ हैं जय हागे। बुलढाणा महाराष्ट्र से एक और संदेश, संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले का। और कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम गायकवाड़, साई गायकवाड़ और इनके परिवारीजन। श्रोताओं, बदलते मौसम

का अपना ही मिजाज होता है, कभी धूप की हल्की मुस्कान तो कभी बादलों की शरारत, और कभी बरसती फुहारों के बीच दिल के अनकहे एहसास भी जैसे सुर बनकर गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही मनभावन मौसम की भावनाओं को शब्दों और सुरों में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म लोफर से हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से जुड़े हैं। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति इनके साथ हैं, इनके परिवारीजन। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहनकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तैडी और आशीष मुर्रीकर। सौंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र और हेयांश कुमार। सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकम खत्री, अल्तमश, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी सौरभ, सहना और निवान शर्मा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। इनके साथ हैं मुन्ना स्वर्णकार और पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गांधीनगर गुजरात से जुड़े हैं सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। हमारे अगले ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार और रिंकी शेखावत। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू और अर्चना कुमार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और इनके ढेर सारे साथीगण। और इसी संदेश में नाम शामिल हैं सीतामढ़ी महावीर से प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटू कुमार और निक्की कुमार। कर्नाटका के श्रोता हैं तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विन, आनंद और मनवीत रमेश। निवासा महाराष्ट्र से संकेत सकट, नंदा, रामदास, जुबेदा, कोमल पटोली और स्वाति गोरे। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य लाडू, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े, अनविता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान और पूजा परिहार। डैम्पियर नगर मथुरा से हमें सुन रही हैं रंजना सैनी। कासगंज से राधे श्याम, शाक्य, ऋषभ, जोली, मधु और इनके परिवारीजन। झालावाड़ राजस्थान से जुड़े हैं हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, नैना सत्यनारायण, कपिल।

और शोभा फुंदीबाई बाकरी उनके साथ हैं। बुरेला खुर्द से आदिनाथ बाग पाटिल, नमोग बाग गुड़िया कृष्णाली अशोक देशमुख, उत्तम कुमार भगत, श्वेता किजितासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और इनके ढेर सारे साथीगण। बरेली उत्तर प्रदेश से हरिशंकर, सोनी, द्रौपदी रानी और इनके परिवारजन। श्रोताओं, बरसाती मौसम की अपनी एक अलग ही रवानी होती है। काले काले बादल जब आसमान में उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं तो मन अनायास ही किसी मधुर धुन को गुनगुनाने लगता है। ऐसे ही मनभावन मौसम में हमारा अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी रेडियो सेट के माध्यम से। लता मंगेशकर की आवाज है, भावी फिल्म का गीत है, राजेंद्र कृष्ण की रचना, चित्रगुप्त का संगीत निर्देशन। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं, आनंद लेते हैं इस गीत का।

थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत चित्रगुप्त का था। जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं सोनाली, मोनिका और रानू मैडम। मुंगीसपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीकेश कुमार। रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी और अंकित कांगड़ा। और मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली लाटली, निशा और इनके परिवारजन। श्रोताओं, पूरे 8 बज चुके हैं, समय अब समाप्त होता है कार्यक्रम का। आपने संदेश भेजा, बहुत सारे संदेश हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं और बहुत सारे श्रोतागण इस कार्यक्रम में उनके नाम रह गए हैं, हमसे खफा भी हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसे ही संदेश भेजते रहिए, प्रोग्राम में जुड़े रहिए और गीत संगीत का आनंद लेते रहिए। फिलहाल अपने दोस्त अरविंद को इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मोहरा फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत विजय शाह का था। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल सुरों में 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संकेत। कार्यक्रम का यह गीत आप तक पहुंचा रहे हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। गीतकार है मजरू, संगीत जतिन ललित का है।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम को जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में रिफ्यूजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम देशगान, आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना।

नई फिजा में नए सिरे से अभी आप सुन रहे थे प्रेम धवन की ये देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में। देशगान कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं समवेत स्वरों में सत्यकाम विद्यालंकर की देशभक्ति परक रचना।

संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे सत्याकम विद्यालंकर की ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म के कुछ गाने। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक ऐसी कालजयी फिल्म की ओर जिसने संगीत, प्रेम और संवेदनाओं की नई मिसाल कायम की। यह फिल्म है बरसात। सन 1949 में प्रदर्शित इस फिल्म का निर्देशन किया था राज कपूर ने। मुख्य भूमिकाओं में राज कपूर, नरगिस, प्रेमनाथ और निमी थे। संगीतकार शंकर जयकिशन की यह पहली फिल्म थी और इसी फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के शब्दों ने इन दोनों को अमर बना दिया। फिल्म की कहानी दो मित्रों के प्रेम दर्शन के इर्द गिर्द घूमती है। एक प्रेम को जीवन का सबसे पवित्र एहसास मानता है, जबकि दूसरा उसे केवल क्षणिक आकर्षण समझता है। लेकिन परिस्थितियां दोनों के जीवन की दिशा बदल देती है। इसी भावभूमि को आगे बढ़ाती है फिल्म बरसात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस फिल्म का अत्यंत लोकप्रिय गीत, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से अमर बना दिया।

श्रोताओं, कितनी सरल, कितनी मधुर और कितनी आत्मीय अनुभूति है इस गीत में। प्रेम के प्रथम स्पर्श से मन में उठने वाली हलचल को बड़े ही कोमल शब्दों और मनोहरी धुन में पिरोया गया है। फिल्म में जब अब कहानी आगे बढ़ती है, प्रकृति भी मानो प्रेम की सहयात्री बन जाती है। पहाड़ों की वादियां, ठंडी हवाएं और मन में उमड़ती भावनाएं, इन सब के बीच नायिका का चंचल मन गीत बनकर फूट पड़ता है। तो आइए अब सुनते हैं बरसात फिल्म का एक और सदाबहार फिल्मी नगमा।

श्रोताओं, इस गीत की ताजगी आज भी वैसे ही महसूस होती है जैसे इसके प्रथम प्रदर्शन के समय ही रही होगी। शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर की मनमोहक आवाज इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। फिल्म की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्रेम, विरह, प्रतीक्षा और पुनर्मिलन की भावनाएं एक साथ

मिलन की भावनाएं एक साथ उभरती हैं। अनेक कठिनाइयों और गलतफहमियों के बाद प्रेम की सच्चाई अंततः अपना मार्ग बना ही लेती है। बरसात की फुहारें अब केवल मौसम नहीं रह जाती, बल्कि मिलन और विश्वास का प्रतीक बन जाती हैं।

श्रोताओं, फिल्म बरसात केवल एक सफल प्रेम कथा नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की इतिहास की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसने संगीत, अभिनय और प्रस्तुति के नए मानक स्थापित किए। इसके गीत आज भी उतनी ही आत्मीयता से सुने जाते हैं और हर पीढ़ी के श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की किसी और यादगार फिल्म और उसके अमर गीतों के साथ। कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं। अब मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हमने आपको सुनवाए बरसात फिल्म के कुछ गाने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्रुक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और

0: और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी।

0: आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
2: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है। जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की

सुहाने तराने कार्यक्रम की पहली पेशकश आपने सुनी। खिलौना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चोर मचाए शोर से। गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं, आवाज है आशा भोसले की।

आशा भोसले की आवाज में चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आपके रेडी सेट पर।

किशोर कुमार, मन्नाडे और महमूद की आवाज़ों में पड़ोसन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है, और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज़्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में

0: में करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, होम मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एलनीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
0: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक सी हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है, और लोगों का

मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही हैं, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं. सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एलिनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है. बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटिजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है. हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है, प्रभावित होंगे, वो पहले से चिन्हित है. आईसीआर के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है. 2,500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी. और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है.

0: तो ड्राउट में कम कर देंगे, और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है
1: जी
0: और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी,
1: जी
0: मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको,
1: जी
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई एलिनो है इस बार, मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये
1: बात।
0: गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए,
1: जी
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए, और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
0: नहीं मिली, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी, मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी, तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही

0: नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो

0: भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है। वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
0: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आप

0: कि क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
1: नहीं देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरीगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरीगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए। और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
0: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही पलों में होगा।
1: This is Akashwani. In tonight's Ravivasari Akhil Bhartiya Sangeet Sabha, we bring you a flute recital by Pandit Kailash Chand Sharma. Pandit Kailash Chand Sharma was introduced to the world of music

ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय

0: रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद्र शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। दिस प्रोग्राम केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 9 जुलाई को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा और व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव, नियमित स्नान एवं वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन आदि विषयों से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए

ये समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।